हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताए एवं काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है।

यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमारे विचार और हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक और बुरी सोच के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर यदि हम शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें खुशियाँ और सफलता का अनुभव होता है। हमारे विचारों की शुद्धता हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आरजे साथी दांपा कोलंब आकाशवाणी के अरुण एफएम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सन 2026 जुलाई महीने के आज 17 तारीख है और दिन है शुक्रवार। श्रोताओं, आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता दी नियो। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे देरो ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की आरंभ करते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। दोस्तों, अब से कुछ ही पलों में 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज। 6:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत और 6:40 पर आप सुनेंगे कालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। के 10 मिनट पर प्रसारित होगा आपातानी श्रोताओं का समाचार। के 15 मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट और 7:35 पर थकिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार और 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ न्यूज। 8:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज। 9:05 पर दिल्ली के अंदर से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। श्रोताओं, 9:10 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्मी गपशप और 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली के अंदर से प्रसारित हिंदी न्यूज। 10:05 पर दिल्ली के अंदर से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। दस बजकर 10 मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज। 11:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज।

तो दोस्तों ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी।

0: राजेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at the Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector.
1: India has set a new global benchmark with this project, while countries like Germany and China usually run

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

शराबियाँ आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुणा एफएम है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम भक्ति गीत, और इसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे तेलियांग जोसवा और उनके साथी द्वारा क्रिश्चिया भजन।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे थेलियांग जोसुआ और उनके साथी द्वारा क्रिश्चिय भजन। आपको बता दूं कि इसी के साथ ही भक्ति गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गालो श्रोता।
1: जी की आकाशवाणी ईटानगर है तानगर देम्रोगाम पे तेलो पोलो का लोरे गोला कानी नाने का लूगो आरो चोगो गालो मिंकी नाग में मिंजी दू मिंकी नाग में मिलने जीने गो जुम तो लंबे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना में मरो प्लानिंग कॉन्फ्रेंस हॉल सिविल सेक्रेटरियट ईटानगर लो बाजोरू ने रिव्यू मीटिंग को दूलक गतु लोदुम आलो लो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम NESIDS मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन PMDY ओक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम BVP PS1 PS2 प्रोजेक्ट अरालोक कामकाज नाम लगाबे मीटिंग अमने लो दूंग मीटिंग आलो लो रिदू ने प्रोजेक्ट गदिग इम्प्लीमेंटेशन रिनाम रिमा अबा पान यूटिलाइजेशन ओक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मिलाई दूला स्टेट अरालोक नारू प्रोजेक्ट एम होमोय लो रिले नाम लगाबे कबा अमने बालिक गतु मीटिंग आलो लो DCM निगम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अबा एम गवर्नमेंट दिनचियारू मेदू ने अला मेन्दूला स्टेट अराग नरू डिस्ट्रिक्ट लोक काम काज प्रोजेक्ट अबा एम बीवा बरिंगाम दूला कभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पान इंस्टॉलमेंट एम पानाम लगाब मेन्तु पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एग्जामिनेशन 2020-25 लोक पान 111 निदुम कैंडिडेट्स का दम ने मरो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ईटानगर लो तुमलिक दूला अपॉइंटमेंट ऑर्डर एम जिलिक तु लोदुम आलो लो चीफ मिनिस्टर पेमा कांदू गवर्नमेंट स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी एम मोदेन मोमो नाम दिनची आरूब मधु ने ओके गवर्नमेंट यूथ निजी यामे का दिगल

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। गालो श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेव चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ज तथा DRM 666 किलोहर्ज पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

जहाँ होती है दिल से दिल की बात और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम सुबह सवेरे। हर नई सुबह एक नई उम्मीद और नया मौका लेकर आती है। कल की चिंताओं को छोड़कर आज अपने सपनों की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। भगवान आपको अच्छी सेहत, खुशियां और हर कदम पर सफलता दे। आपका दिन सुख शांति और मुस्कान से भरा रहे। दोस्तों, इस सुविचार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। जी हाँ, इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ खास हेल्थ से जुड़ी बातों के साथ और सुनेंगे बेहतरीन हिंदी फिल्मी गाने। जी हाँ, तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गीत फ्रॉम द फिल्म यस बॉस। गीत के बोल है एक दिन आप और इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक और कुमार शानू ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत कुदगर्ज फिल्म से मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। जी हाँ, आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में। दोस्तों सुबह की शेयर यानी वॉकिंग सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि सेहत की सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों याद रखिए, रोज सिर्फ 30 से 35 मिनट वॉक करने से दिल मजबूत रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, वेट कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज और हाई बीपी का रिस्क भी कम हो सकता है। सुबह की ताजी हवा और धूप शरीर को एनर्जी देती है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है और दिन भर मन को फ्रेश और पॉजिटिव बनाए रखती है। दोस्तों ये भी याद रखिए कि सेहत एक दिन में नहीं बनती बल्कि रोज की अच्छी आदतों से बनती है। आज का एक कदम कल की बेहतर जिंदगी की शुरुआत है। मुस्कुराइए, चलिए और अपनी सेहत को हर दिन मजबूत बनाइए। जी हाँ, अब चलिए कार्यक्रम में और आगे चलते हुए आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत कुर्बान शमसे। गीत के बोल हैं आओ मैं परा दूं और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और सारिका कपूर ने।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे आपदा निषेधाओं का समाचार। आपदा निषेधाओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट।

कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास समाचार और बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर रखते हैं समाचारों की ओर। राजधानी ईटानगर के प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं, 14 प्लेयर्स फ्रॉम स्टेट टू पार्टिसिपेट इन साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप। अरुणाचल प्रदेश अमेचर कराटे दो एसोसिएशन के 14 खिलाड़ियों को 10वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है। यह चैंपियनशिप 15 से 18 जुलाई तक बांग्लादेश के ढाका में होगी। ईटानगर लोकल गाइड एपीएके ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि 15 जुलाई को कोलकाता में कराटे इंडिया एसोसिएशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका के लिए रवाना होंगी। सीएम प्रेजेंस अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू टीचर्स। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीपीएससी द्वारा आयोजित पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को नियुक्त

पत्र सौंपे। गुरुवार सुबह यहां सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित एक आधिकारिक समारोह ने नए नियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से आयोजित करने के लिए APPSC को बधाई भी दी। अवेल बेनिफिट्स ऑफ फिशरी स्कीम्स नबार्ड आज एस फार्मर्स। नबार्ड के लोअर सुबनसिरी जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर ललित कुमार मौर्य ने जिले के मछली पालकों से कहा कि वे अपने मछली पालन के काम को बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC फिशरी स्कीम का फायदा उठाएं। गुरुवार को यहां तारिन एक्वा पार्क में आयोजित KCC सहित वितरित साक्षरता कार्यशाला में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए मौर्य ने किसानों को क्रेडिट जरूरतों की पूरा करने के लिए KCC को एक असरदार जरिया बताया। इस कार्यक्रम में लगभग 58 किसानों और संबोधित लोगों ने हिस्सा लिया। यह वर्कशॉप इन्फो IT सॉल्यूशन ने अपनी आउटरीच पहल के तहत आयोजित की थी। तो दोस्तों, ये थे राजधानी ईटानगर के प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी हाँ, अब चलिए कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेन में आगे बढ़ते हैं और पेश कर रहे हैं आपके लिए फिल्मी गाने। कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे आपके लिए गीत दिल है तुम्हारा फिल्म से। गीत के बोल है छाया है जो दिल पे, और इस गीत को आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति और शानी।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म है बेबी से श्रेया घोषाल और समीर की आवाज में। अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत जाने तू या जाने ना फिल्म से। गीत के बोल ही कही तो और इस गीत को गाया है रशीद अली ने।

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे कागिन श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे धागिन श्रोताओं का समाचार। धागिन श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा DRM 666 किलो हर्ट्ज पर। अब आप बने हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम सदबहार।

दोस्तों कार्यक्रम सदा बहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी। हाँ, इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ वेदर के अपडेट्स और बेहतरीन सदा बहार गीतों के साथ यानी रेट्रो कलेक्शंस के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर रखते हैं मौसम के अपडेट्स की और उसके बाद आपके लिए प्ले करेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिकल गाने। दोस्तों आज ईटानगर की यानी राजधानी ईटानगर में दिन भर बादल छाए रहेंगे, हल्की से माध्यम बारिश और गरज चमक के साथ कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट जैसे थवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, सियांग, लोहित, नमसाई, चांगलांग, ईस्ट सियांग, तिराप और लोंगडिंग में मानसून सक्रिय रहेगा। कई स्थानों पर हल्की से माध्यम बारिश जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक तेज हवा चल सकती है, इसलिए सावधानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, सड़कों पर फिसलन और नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की संभावना है। यात्रा के दौरान मौसम और स्थानीय प्रशासन की सलाह पर ध्यान दें। जी हाँ, अब चलिए कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं नॉन स्टॉप म्यूजिकल गाने फ्रॉम द कलेक्शन गाइड और गीत के बोल गाता रहे मेरा मन और इस गीत को आवाज दी है किशोर।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वर्मा की आवाज में फिल्म दो दिलों की दास्तां से। आपको बता दूं कि इसके साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र और शिलांग केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: भेजते हैं
1: रे बेहतरीन। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव

0: अधिक तापमान, आग के लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने

0: के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है ओरमूज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ता की सुर्खी है।

दोस्तों कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ खास यूजफुल इन्फॉर्मेशन और बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। जी हाँ, तो कार्यक्रम में सबसे पहले चलिए नजर रखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के सेगमेंट पर प्रोकास्टिनेशन क्या है और इससे कैसे सुधारे। दोस्तों प्रोकास्टिनेशन का मतलब है किसी जरूरी काम को बिना किसी मजबूत वजह के बार बार बात के लिए टालते रहना। जी हाँ, इस आदत की वजह से काम का बोझ बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और अक्सर अच्छे मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। प्रोकास्टिनेशन के आम कारण है असफलता का डर। जी हाँ, फियर ऑफ फेलियर। काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगना, मोटिवेशन की कमी, मोबाइल और सोशल मीडिया से ध्यान भटकना, हर काम को परफेक्ट करने की सोच रखना। जी हाँ, इस कारण से प्रोकास्टिनेशन होते हैं। और दोस्तों इसे सुधार भी सकते हैं, जैसे बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू कीजिए। अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। दिन के जरूरी कामों की प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और काम करते वक्त मोबाइल और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। और याद रखिए कि हर छोटी सफलता पर खुद को अप्रिशिएट कीजिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी प्रोकास्टिनेशन जरूर दूर हो जाएंगे। और प्रोकास्टिनेशन एक आदत है और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लेने से बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। अब चले कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं बेहतरीन फिल्मी गाने। फ्रॉम द फिल्म वॉन्टेड गी के बोल है दिल लेके दर्द दिल, और इसकी को आवाज दी है शान और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब चलिए कार्यक्रम में नजर रखते हैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से खुद को कैसे बचाएं। जी हाँ, इस टॉपिक पर चलिए हम बातें करते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमें दुनिया से जोड़ता है। जी हाँ, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल बिना सीमा के किया जाए तो ये हमारा समय, ध्यान और प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है। इसे बचने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाएं। सोशल मीडिया खोलने से पहले खुद से पूछिए, मैं किस काम के लिए

ऐप खोल रहा हूँ। बिना वजह स्क्रॉलिंग से बचे, टाइम लिमिट बनाइए रोज के लिए 20 से 30 मिनट की लिमिट रखिए जी हाँ, और उसका पालन कीजिए। जरूरत हो तो फोन के स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेल बीइंग फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान तोड़ सकती है, सिर्फ जरूरी कॉल्स और मैसेजेस के नोटिफिकेशंस ही चालू रखिए। फोन को दूर रखिए, पराई काम या किसी जरूरी एक्टिविटी के दौरान फोन को साइलेंट मोड पर रखकर अपनी नजर से दूर रखिए, और सुबह रात सोशल मीडिया से दूर रहिए, यानी दिन की शुरुआत और सोने से पहले कम से कम 30 से 40 मिनट तक सोशल मीडिया से दूर रहने की आदत डालिए, और रियल लाइफ एक्टिविटीज बनाइए, जैसे वॉकिंग, एक्सरसाइज, किताब पढ़ना, फैमिली के साथ समय बिताना और नई स्किल्स सीखना। सोशल मीडिया की आदत कम हो सकती है इससे, और आपको कम करने में भी मदद मिल सकती है। दोस्तों, अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखिए, हर हफ्ते देखिए कि आपका स्क्रीन टाइम कम हुआ या नहीं। छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए, और याद रखिए सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है, लेकिन जब टूल हमें कंट्रोल करने लगे तो तब बदलाव की जरूरत होती है। समय का सही उपयोग ही सफलता और अच्छी सेहत की बुनियाद है। अपने समय पर काबू पा लीजिए, वरना समय और डिस्ट्रेक्शंस मिलके आपके सपनों पर काबू पा लेंगे। जी हाँ, चलिए अब इसके साथ ही आपके लिए कार्यक्रम हेलो ईटानगर में पेश कर रहे हैं एक और बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म गैंगस्टर। गीत के बोल है बी की बिगी, और इस गीत को गाया है जेम्स और प्रीतम चक्रवर्ती ने।

0: दोस्तों इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में यानी 9 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
3: इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनः परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे दिल्ली के अंदर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आपके लिए प्ले करेंगे बेहतरीन गाने और हम बातें करेंगे चटपटे गॉसिप्स बॉलीवुड से जुड़ी। जी हाँ, तो चलिए आज की बॉलीवुड अपडेट्स क्या है, चलिए नजर रखते हैं। दोस्तों, कैटरीना कैफ ने अपना 43rd बर्थडे सेलिब्रेट किया। जी हाँ, उन्हें करीना कपूर, सोनम कपूर और रकुल प्रीत सिंह समेत कई बॉलीवुड स्टार्स ने सोशल मीडिया पर विशेष दी। कार्टिगारियन फैंस के लिए कुछ खबरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूलभुलैया 4 के स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है और कार्तिक एक बार फिर से रू बाबा के रोल में नजर आ सकते हैं। प्रोडक्शन 2027 में शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, इस हफ्ते ओटीटी पर कई नए टाइटल्स रिलीज हुए हैं। वीकेंड के लिए नई मूवीज और सीरीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। धुरंधर भी लगातार चर्चा में बनी हुई है और फिल्म अपनी इंटरनेशनल रिलीज को लेकर खबरों में है। साल के दूसरे हिस्से में कई प्रेस ऑन स्क्रीन पेयरिंग्स और बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स को लेकर भी बच बना हुआ है। दोस्तों, बॉलीवुड में कई बड़े एक्टर्स की अपकमिंग फिल्म्स को लेकर तैयारी चल रही है। एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी जॉनर की मूवीज पर ज्यादा फोकस देखा जा रहा है। बड़े स्टार्स अपने आने वाली फिल्मों के अनाउंसमेंट्स और शूटिंग अपडेट्स को लेकर चर्चा में है। फिल्म स्टार्स के सोशल मीडिया पोस्ट, इवेंट्स और पर्सनल लाइफ अपडेट्स फैंस के बीच हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। एक्टर्स अपने नए प्रोजेक्ट, फिटनेस और लाइफस्टाइल को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते नई मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होती है। दोस्तों, हम आगे जानेंगे इस सेगमेंट पर, लेकिन उससे पहले आपके लिए पेश कर रहे हैं नॉन स्टॉप बेहतरीन फिल्मी गाने। जी हाँ, और सबसे पहला सॉन्ग आपके लिए प्ले कर रहे हैं न्यूयॉर्क फिल्म से। गीत के बोल है जुनून और इस गीत को गाया है प्रीतम के और संदीप ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत एक क्रैक फिल्म से और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत सावरिया फिल्म से और इस गीत को आवाज दी है शान ने।

बस इससे गीत के बाद अब चलिए बॉलीवुड की अपडेट्स पर नजर रखते हैं। जी हाँ, नई फिल्मों पर। दोस्तों, धमाल फॉर हिट की तरफ अजय देवगन और अरशाद वर्षी की कॉमेडी फिल्म धमाल फॉर को ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने पहले हफ्ते में स्ट्रॉन्ग कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 120 करोड़ के आसपास पहुंच गया और आलिया भट्ट और सरवारी वॉक की अल्फा फिल्म को आलिया के एक्शन अवतार और विजुअल्स के लिए अप्रिसिएशन मिला, लेकिन ऑडियंस रिस्पांस मिक्स आ रहा है। जी हाँ, कलेक्शन हुआ है लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर इम्पैक्ट नहीं बना। वेलकम टू द जंगल एवरेज से नीचे अक्षय कुमार की इस कॉमेडी फिल्म ने कुछ कलेक्शन किया, लेकिन रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। आने वाली बड़ी चर्चा वाली फिल्में बड़े स्टार्स की एक्शन थ्रिलर और फ्रेंचाइज फिल्म्स पर ऑडियंस की नजर है। आजकल बॉलीवुड में फ्रेंचाइज वैल्यू स्ट्रॉन्ग स्टोरी और वर्ड माउथ सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। अब चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं आलिया भट्ट की नई फिल्म आल्फा से गीत। जी हाँ, गीत के बोल ही हानिया और इस गीत को आवाज दी है रोहांश ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे एक गीत शिल्पा राव और जॉनी देव गांधी की आवाज में फिल्म आलपा से। जी हाँ, और आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में और हम लौटेंगे इस अंतराल के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
4: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
5: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं नॉन स्टॉप फिल्मी गाने। जी हाँ, फ्रॉम द फिल्म बैंग बैंग। दोस्तों इस गीत को गाया है बेनी डेयर और नीति मोहन ने। जी हाँ, आपको अब सुना रहे हैं बैंग बैंग फिल्म का टाइटल ट्रैक।

दोस्तों आप सुन रहे थे कि शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म वॉर से। जी हाँ, और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत चाइना गेट फिल्म से। गीत के बोल हैं छम्मा और इस गीत को आवाज दी है अलका यातिक ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी गपशप यहीं पर समाप्त होते हैं और आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में यानी 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और उसके तुरंत बाद आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को इस महीने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर ऐसा ही मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at the Jind railway station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency, NTA, has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counselling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. Gujarat Anti-Terror Squad, ATS, has arrested five persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed, JEM, outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shira, Mohammed Ayub Kadiwala, Mohammed Palanpuri alias Khali Ayub Sunsara, Shafia Reyes Mukti, and Mohammed Hassan Kardia. They were apprehended from Khadial village in Sidhpur Taluka of Patan district. The officials said that the five accused were held after their names surfaced during the investigation of eight LSJEM operatives held earlier this month. Goa government has tightened regulations governing casino operations by prohibiting entry of persons below 21 years of age into casino gaming areas. Home Department has issued a notification enforcing the new restriction. The notification also introduces stricter provisions regarding the payment of license fees for offshore casino vessels. U.S. forces launched a fresh wave of military strikes against Iran last night, marking the sixth consecutive night of operations against the Islamic

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, और मैं हूँ आपके आरजे साथी दांपक। दोस्तों, इस सेगमेंट पर हम वो गाने प्ले करते हैं जो आप हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं। जी हाँ, और आपकी रिक्वेस्ट से ही हमारा ये कार्यक्रम पूरा होता है। तो चलिए, कार्यक्रम का सबसे पहला सॉन्ग रिक्वेस्ट लेते हैं। सबसे पहला रिक्वेस्ट आया है असम से हर्षित गोस्वामी जी से, और हर्षित जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत जब कोई बात बिगड़ जाए, अतीब असलम और शैली शेटिया की आवाज में। आपको बता दूं कि दोस्तों, ये गाना रिप्राइज वाला गाना है जो कि अतीब असलम और शैली शेटिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई है। तो प्ले कर रहे हैं हर्षित जी के लिए ये गीत, और हर्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।

दोस्तों, इससे गीक के बाद अब कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर हमें रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिसनर से, रमेश पात्रो, रोनू पात्रो, लकी जी गोलाघाट आसाम से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत ब्लैकमेल फिल्म का सॉन्ग पल पल दिल के पास, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, और ये गीत वो डेडिकेट करते हैं अपने दोस्त बाइकॉन मुंडा, बिमल अमल और देवशी सितेंद्र और जोगेंद्र जी को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आप सभी के दोस्ती के नाम ये गीत।

वैसे आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में, और अब चलिए कार्यक्रम में और आगे नजर रखते हैं हमारे सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर। इस वक्त सॉन्ग रिक्वेस्ट में आई है लालू कसाम से, सत्यजी छोटिया जी से, और जो कि हमारे रेगुलर लिसनर है, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत राज फिल्म का। आपको बता दूं गीत के बोल है सोनियो, और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। सत्यजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपके फरमाइश पर ये गीत।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the riverbed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in riverbanks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the riverbanks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in riverbeds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
3: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और कार्यक्रम में अब हमें रिक्वेस्ट आई है हितेंद्र दास असम से, जो हमारे रेगुलर लिस्नर है। हितेंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया है रोची फिल्म का गीत। गीत का बोल है, गोरे रंग पे इतना गुमाना कर। और आपको बता दूं कि इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। हितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आपके रिक्वेस्ट पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब हमें कार्यक्रम में रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिस्नर ज्योति सुरेन जी से, हेलम असम से। और ज्योति जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत प्यारे मोहन फिल्म से। गीत के बोल है लव यू माय एंजल, और इस गीत को गाया है कुणाल गंजावाला ने। ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

मैं सिस्टर गीत के बाद अब हमें रिक्वेस्ट आई है सेंगीपुर ईटानगर से आरब खापजी से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है बॉर्डर टू का गीत, और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम, जावेद अख्तर, पलक मुच्छल और अनु मलिक ने। आरब जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपके फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही वक्त हो चला है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर और इसी के साथ ही समय हो चला है मेरे जाने का। लेकिन जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे मंच। दोस्तों, हमारे इस पहली प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता दी नियोग। तो अब मुझे यानी अपना आरजे साथी दांपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देश से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि नवाचार, हरित परिवहन और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके क्रियान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 695 अंक बढ़कर 77,882 जबकि निफ्टी 178 अंक की बढ़त के साथ 24,251 पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों पर व्यापक कार्रवाई की योजना की घोषणा की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका की सड़कों पर अवैध रूप से काम कर रहे लोगों को हटाकर उनकी जगह नए वाणिज्यिक लाइसेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य क्षेत्र के लोगों को लाना है। ये घोषणा पेंसिल्वेनिया रक्षा तथा नवाचार शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in a short while from now. The Prime Minister will also lay the foundation stone and 1,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, the Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. Prime Minister Modi has highlighted that today, the dream of India receiving its first hydrogen train is about to become a reality. He emphasized that the milestone reflects India's growing commitment to innovation, green mobility, and the vision of Atmanirbhar Bharat. Union Home Minister Amit Shah. He is scheduled to land at Baghdogra Airport in Siliguri at 9 p.m. and will stay overnight at the BSF Frontier Headquarters in Kadamtala. Tomorrow, Mr. Shah will visit the BSF's 18th Battalion at Seema Chowki in Jumagach, where he will address a Prahari Sammelan, participate in a plantation drive, lay foundation stones, inaugurate several development projects, and interact with BSF personnel. Later, the Home Minister will hold a series of higher-level meetings at Uttar Kanya in Siliguri. Later in the evening, he will leave for Kolkata. The National Testing Agency, NTA, has declared results of NEET UG 2026 re-examination. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. Gujarat Anti-Terrorist Squad or ATS has arrested five persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shera, Mohammed Ayub Kariwala, Mohammed Palanpuri alias Khali Ayub Sansara, Shafia Rais Mukhti and Mohammed Hassan Kardia. The officials said the five accused were held after their names surfaced during the investigation of eight alleged Jaish-e-Mohammed operatives held earlier this month. Four people, including three school students, were killed in a tragic train accident in West Bengal's Murshidabad district this morning. The accident took place between Kanasuvarna railway station and the Gobindapur level crossing on the Azimganj-Katwa section when a school vehicle was struck by an oncoming train while crossing an open level crossing. The incident sparked outrage against among local residents who alleged negligence on the part of the railway gatekeeper. Police and railway authorities have begun separate investigations and the railway inquiry team has reached the site to determine the exact cause of the accident. Last night, marking the sixth consecutive night of operations against the Islamic Republic following the collapse of peace deal between both the sides. Domestic equity markets traded higher in the morning session today with benchmark indices gaining around 1% each despite weak global cues led by buying in IT and auto stocks. In early trade, Sensex climbed 695 points to 77,882 while Nifty advanced 178 points to 24,251.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: हेलो एंड वेलकम डियर लिसनर्स, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है हमेशा दिल से दिल तक। और मैं हूं आपकी आरजे साथी मांश। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के दोपहर के प्रसारण सभा में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजंग एवं तकनीकी अभियंता रितेश सिंह, और मैं अपनी आवाज के साथ आपकी आरजे बिंदुंग दिंदों मांझ। दोस्तों, इससे पहले यानी कि सुबह की प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे दांपक के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज का ये प्रसारण सभा। चलिए दोस्तों, फिल्मी लहर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत से। हम सुनेंगे फिल्म गुरु से बरसों रे मेघा मेघा। हाँ, इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल ने, संगीत के निर्देशक है ए आर रहमान, गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने। चलिए सुनते हैं ये गीत।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी।

दोस्तों चलिए फिल्मी लहर में अब सुनते हैं अगला गीत। हम सुनेंगे फिल्म स्वदेश से उदित नारायण की आवाज में यू ही चला चल रहा है।

0: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
1: दोस्तों। इस बारिश भरे मौसम में चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही रोमांटिक सा बरसात वाला गीत। सुनेंगे फिल्म बागी से छम छम छम।

0: And that was the final track for today. I hope these songs kept you company and made your day just a little brighter. This was Western Music Program, only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता

0: दाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bank to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपकी आरजे मांझ। अब वक्त हो चला है हमारे दोपहर के इस प्रसारण सभा में कार्यक्रम गजल का। चलिए दोस्तों आनंद लेते हैं इस सुहाने मौसम में, सुहाने से कुछ बेहतरीन से दिल को छू लेने वाले, दिल को शांत कराने वाले कुछ गजलों के नगमे। दोस्तों सबसे पहला गीत, सबसे पहला गजल जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पंकज उदास की आवाज में, चांदी जैसा रंग।

0: Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
1: दोस्तों, गजलों की दुनिया में की बादशाह है जगजीत सिंह। तो कैसे हम गजल का ये कार्यक्रम बिना उनके गीत का पूरा करें। चलिए दोस्तों, सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म सरफरोश से होश वालों को खबर क्या।

आइए दोस्तों, हमारे गजल के इस नगमे के सिलसिले में सुनते हैं एक और प्यारा सा गजल। जगजीत सिंह की आवाज में ही हम सुनेंगे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।

दोस्तों यही तक था हमारा गजल का कार्यक्रम, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों गीत माला के हमारे इस खास कार्यक्रम पर। आज का ये खास कार्यक्रम समर्पित है हमारे देश के वीर जवानों को, उन सैनिकों को जो हर मौसम, हर चुनौती, हर परिस्थिति में हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सरहदों पर तैनात हमारे जवान सिर्फ देश की हिफाजत ही नहीं करते, बल्कि अपने घर, अपने परिवार और अपनों से दूर रहकर एक मिसाल भी पेश करते हैं। उनकी हिम्मत, उनका जज्बा और उनका बलिदान हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों संगीत एक ऐसी दौड़ है जो दूरियों को भी करीब ले आती है, और आज के इस गीत माला में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गीत जो शायद हमारे जवानों को उनके अपनों की याद दिलाए, उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आए और उनके हौसलों को और भी मजबूत बनाए। तो शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले गीत से। ये गाना उन लम्हों की याद दिलाता है जब अपने पास होते हैं और दूर रहकर भी उनकी यादें दिल के बहुत करीब रहती है। पेश है दोस्तों फिल्म तारा रंपम से ये गीत है शोना।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत माला आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों जिंदगी में प्यार और यादें जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है हौसला, हिम्मत और कभी न हार मानने का जज्बा। और जब बात हमारे फौजी भाइयों की हो तो उनकी बहादुरी और निडरता को सलाम करना हम सबका फर्ज है। अब वक्त है एक ऐसे गीत का जिसमें है जुनून, हिम्मत और बेबाक अंदाज। ये गाना अपनी दमदार एनर्जी और शानदार पंजाबी रंग के लिए बहुत पसंद किया गया है। तो चलिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए और हमारे देश के वीर जवानों के नाम सुनिए फिल्म एनिमल का ये जबरदस्त गीत अर्जन वेल्ली।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत माला सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर. जोश से भरपूर इस गीत के बाद एक बार फिर से हमारे वीर जवानों को सलाम. उनकी सेवा और समर्पण की वजह से ही हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सुकून से जी पाते हैं. दोस्तों एक मजबूत देश सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा से नहीं बल्कि अपने नागरिकों की आवाज को सुनने और संवाद की परंपरा से भी मजबूत होती है. आजकल दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक और उनके साथियों का अनशन और शांतिपूर्ण

0: प्रदर्शन भी देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने लद्दाख से जुड़े मुद्दों और स्थानीय लोगों की चिंताओं को सामने रखते हुए संवाद की मांग की है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है कि विचारों का आदान प्रदान शांति और सम्मान के साथ हो, और इसी जज्बे के साथ हमें याद आता है एक अमर संदेश, बीते हुए कल से सीखते हुए आज को बेहतर बनाने और कल को और रोशन बनाना। आइए दोस्तों, इसी उम्मीद और नए विश्वास के साथ सुनते हैं एक सदाबहार गीत जो हर पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फिल्म हम हिंदुस्तानी से छोड़ो कल की बातें।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: दोस्तों छोड़ो कल की बातें हमें याद दिलाती है कि बेहतर कल की बुनियाद हम आज के हौसले और सही इरादों से रखते हैं। हमारे वीर जवान भी इसी विश्वास के साथ हर दिन अपनी जिम्मेदारी निभाती है। कभी तपती गर्मी, कभी बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, तो कभी मुश्किल हालात, लेकिन उनका जज्बा कभी कम नहीं होता। उनकी हिम्मत हमें सिखाती है कि उम्मीद का दिया हर परिस्थिति में जलाए रखना चाहिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। ऐसे ही एहसासों को बहुत खूबसूरती से बयां किया है हमारे अगला गीत, जो दिल को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म पीके का बेहद मशहूर और दिल को छू लेने वाला गीत, भगवान है कहा रे तू, सोनू निगम की आवाज में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर।

0: काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jain the special place in India's history.
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है. आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है. अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है. हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे.
2: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that this milestone is the result of a strong national resolve to develop indigenous hydrogen technology. Mr. Vaishnav emphasized that the train is completely environment-friendly with no requirement for diesel or petrol.
3: इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल ट्रक इन कार्स, इन स्मॉल फिशिंग बोट्स, इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज माइनिंग ट्रक्स, माइनिंग इक्विपमेंट, इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस आल्सो. सो नाउ वी कैन बेसिकली यूज दिस टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल सेक्टर्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीबॉडी.
2: Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. The Directorate General of Maritime Administration has directed ship owners, ship managers and recruitment and placement service license companies to avoid deploying Indian seafarers on vessels undertaking voyages through the Strait of Hormuz until further orders. The Maritime Administration has issued an advisory on precautionary measures for the safety and security of Indian seafarers in view of the heightened security situation in the Gulf region. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the parliament this Sunday, ahead of the upcoming monsoon session of parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. The Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested five persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shera, Muhammad Ayub Kariwala, Muhammad Palanpuri alias Khali Ayub Sansara, Shafia Rais Mukti and Muhammad Hassan Kardia. The European Union has expressed serious concern over the human rights situation in Pakistan. It has warned that Pakistan's continued access to trade benefits under the Generalized Scheme of Preferences Plus or GSP Plus will depend on its compliance with international commitments under the revised GSP framework from 2027. And with that, we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और वक्त है हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, जहां हर गीत अपने साथ लेकर आता है यादों की खुशबू, सुरों का जादू और हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की मीठे यादें। मैं हूं आपकी आरजे मांझ और अगले कुछ पलों तक हम सफर करेंगे उन नगमों के साथ, जो आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने अपने रिलीज के वक्त थे। ये वो गीत है जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक मस्ती भरे, दिलकश और सदाबहार गीत से। इस गीत की धुन, इसकी मस्ती और इसके बोल आज भी हर संगीत प्रेमी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। फिल्म चलती का नाम गाड़ी से किशोर कुमार और मन्ना दे की आवाज में। चलिए दोस्तों सुनते हैं बाबू समझो इशारे।
2: बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात करते हैं हम दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक का हमारा ये प्यारा सा कार्यक्रम। बाबू समझो इशारे की मस्ती और उसका अंदाज आज भी उतना ही ताजा महसूस होता है। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की यही तो खासियत है कि हर गीत अपने साथ खुशियों की एक नई लहर लेकर आता है। और अब बढ़ते हैं एक ऐसे गीत की तरफ जो मासूमियत, प्यार और अपनापन से भरा हुआ है। इस गीत की मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले बोल इसे हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की लेजेंडरी जोड़ी में, सुनेंगे फिल्म कारवां से कितना प्यारा वादा।

चलिए दोस्तों, अब हिंदी क्लासिक म्यूजिक के सफर में सुनते हैं अगला गीत। हम सुनेंगे हवा में उड़ता जाए, फिल्म बरसात से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: are you?
1: दोस्तों, अगर आपने कुछ देर पहले हमारे तरफ से थोड़ी सी खामोशी, थोड़ी सी शांति महसूस की हो तो घबराइए मत। स्टूडियो में चल रहा है छोटा सा टेक्नोलॉजिकल मेकओवर, तो कभी कभी मशीन्स भी कहते हैं कि हमें भी थोड़ा अपग्रेड चाहिए। लेकिन दोस्तों, एंटरटेनमेंट आपके लिए बना रहेगा, हम तैयार हैं आपके लिए और लेकर आए हैं संगीत, बेहतरीन संगीत और जबरदस्त साथ। चलिए हम आपको सुनाते हैं कुछ और बेहतरीन गीत। हम सुनेंगे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का एक लड़की को देखा। अगर आगे भी कोई दिक्कत हो तो हमें माफ कीजिएगा, आगे से मैं आपको माफी मांग रही हूँ। और दिल से धन्यवाद बने रहने के लिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बात करें दिल से दिल तक और एंटरटेनमेंट हो फुल ऑन।
2: मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे
3: जैसे क्या

0: 滚呐！
1: दोस्तों अगला गीत चलिए सुनते हैं, फिल्म परिणीता से सुनेंगे सोनू निगम की आवाज में पीयू बोले।
2: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली,
3: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
2: I don't know, you know.

0: Now just imagine. एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता. और एक दिन चर्च में

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

0: moderate to heavy rainfall during the day. A report.
1: The weather department also predicted thunderstorms and lightning today over Gangetic, West Bengal, Jammu and Kashmir, Ladakh, Muzaffarabad, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rayalaseema and Telangana. Similar weather conditions are also expected at places over parts of Northeast India, Andaman and Nicobar Islands, Bihar and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Meanwhile, heat wave conditions are likely to persist today over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. The Met department said that Andhra Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience a hot and humid day today. With Priya, this is Anuja Kumar for Akashwani News, Delhi.
0: In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from their women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. World number 10 Sindhu will now face China's world number 4 Chen Yufei in the semi-finals tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है
3: दो नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।

0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
4: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार से जागृति शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज

0: साथ 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कोलकाता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने

आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुस जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और लेकर आए हैं दोस्तों कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s, एक ऐसा सफर जहां हम लौटेंगे हिंदी सिनेमा के उस दौर में जब हर गाना अपनी एक अलग पहचान बनाता था। 90s का जमाना था जब कैसेट प्लेयर्स की आवाज, फिल्मी पोस्टर्स का क्रेज और नए अंदाज के गीतों ने हर दिल पर अपनी छाप छोड़ रखी थी। इस दौर के गाने आज भी यादों के साथ जुड़े हुए हैं। कभी दोस्ती की याद दिलाते हैं, कभी प्यार की और कभी बस पुराने खूबसूरत पलों की। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल जर्नी के लिए, जहां हर धुन लेकर आएगी एक नई याद। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे एनर्जेटिक और आइकॉनिक गाने से, जिसने अपनी मस्ती, डांस स्टेप्स और सुपरस्टार अंदाज से हर जगह धूम मचा रखा है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं फिल्म कहो ना प्यार है से ऋतिक रोशन के जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ एक पल का जीना।

दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक, और आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s का कार्यक्रम। चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत। दोस्तों, 90s का म्यूजिक सिर्फ धुनों का सफर नहीं, बल्कि नए प्रयोगों का, खूबसूरत मेलोडीज और अलग अलग रंगों का एक अनोखा संगम था। इसी दौर में कुछ ऐसे गाने आए जो अपने संगीत और अंदाज की वजह से हमेशा याद रखे गए। अब बारी है एक ऐसे शानदार गीत की, जिसमें है खूबसूरत सुर, ग्रैंड प्रेजेंटेशन और एक अलग ही अंदाज। तो चलिए सुनते हैं फिल्म जीन्स का अजूबा।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।

0: ऑपरेटर साहब फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ। IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
3: गीत संगीत,
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s का हमारा ये बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम। दोस्तों, इस हिट्स ऑफ 90s में हम आपको सुना रहे हैं वो सारे गीत जो एक समय में हमारे दिल के बहुत करीब था। जी हाँ, हर रेडियो स्टेशन पर, हर कैसेट्स में, हर चैनल्स पे हम यही सब गीत सुन रहे थे, और आज वो हमारा एक बहुत ही प्यारा सा मेमोरी बन चुका है। उसी मेमोरी लेन में चलते हुए चलिए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये रोमांटिक सा गीत, तुझे देखा तो।

दोस्तों हिट्स ऑफ 90s में आज के लिए बस इतना ही। अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, जिसके बाद दोस्तों आप सुनेंगे मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और फिर थाई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। तो बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम, और उससे पहले आपने सुना वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है बॉलीवुड अपडेट्स का। दोस्तों बॉलीवुड की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है और हम वो लाते हैं उनकी खबर सबसे पहले सबसे खास आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए दोस्तों लेते हैं पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस सना साइद की, जिन्होंने अपने बचपन से जुड़ी एक बहुत ही पर्सनल और मुश्किल कहानी दुनिया के सामने रखी है। सना साइद को हम सब जानते हैं उनके यादगार किरदार अंजलि के रूप में फिल्म कुछ कुछ होता है में। छोटी सी उम्र में उन्होंने शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी जैसे बड़े सितारों के साथ काम करके अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। बाद में वो फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी नजर आई, लेकिन पर्दे के पीछे सना की जिंदगी में एक ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सना ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वो काफी छोटी उम्र से बुलिमिया नर्वोसा, एक ईटिंग डिसऑर्डर से का सामना कर रही थी। उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल बात ये थी कि उन्हें सालों तक समझ नहीं आया कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। उनके आसपास इस तरह की मेंटल हेल्थ और ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात नहीं होती थी, इसीलिए उनके पास अपने फीलिंग्स को समझने के लिए सही शब्द नहीं थे। सना ने अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए बताया कि कई बार उनके खाने को लेकर एंजाइटी होती थी और वो अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश करती थी। उनके लिए ये स्वीकार करना भी आसान नहीं था कि वो एक ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही है। उन्होंने ये भी शेयर किया कि जब उन्हें इस कंडीशन के बारे में पता चला तो पहली बार उन्हें लगा कि उनकी परेशानी का एक नाम है और वो अकेले नहीं है। सना ने अपने जर्नी के बारे में भी बात करते हुए कहा कि अब वो रिकवरी के सफर में आगे बढ़ चुकी है और अपने अनुभव को शेयर करना चाहती है ताकि दूसरे लोग भी अपने स्ट्रगल्स को समझ सके और मदद लेने से ना डरे। सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक और बॉलीवुड की प्रतिक्रिया। अब बढ़ते हैं एक और बड़े मुद्दे की तरफ जो इन दिनों देश भर में चर्चा में है। लद्दाख के मशहूर इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और इनोवेटर सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे हंगर स्ट्राइक

को लेकर सुर्खियों में है। ये प्रोटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांगों से जुड़ा हुआ है। प्रोटेस्टर्स ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार की मांगों से प्रोटेस्टर्स ने एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स की जरूरत को लेकर अपनी आवाज उठाई है। सोनम वांगचुक, जो अपने इनोवेटिव काम और एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बने और उनके हंगर स्ट्राइक के दौरान उनकी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। उनकी तबीयत को लेकर डॉक्टर्स ने भी नजर बनाए रखी है और कई लोगों ने उनसे अपना फास्ट खत्म करने की अपील की है। दोस्तों, सोनम वांगचुक का नाम बॉलीवुड फैंस के लिए भी जाना पहचाना है क्योंकि कई लोग उन्हें फिल्म थ्री इडियट्स के कैरेक्टर रैंचो या फुनसुक वांगडू से जोड़ते हैं। इस मुद्दे पर एक्टर आमिर खान ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये एक गलत फहमी है कि थ्री इडियट्स का किरदार सीधे तौर पर सोनम वांगचुक की जिंदगी पर आधारित था। आमिर ने बताया कि फिल्म बनाते वक्त उन्हें सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आमिर ने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और उनकी सेहत को लेकर सभी को चिंता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये स्थिति अच्छे तरीके से सुलझे। वही एक्टर ओमी वेद्या, जो थ्री इडियट्स में चतुर के किरदार के लिए मशहूर है, ने भी सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। एक्टर विवेक ओबेरॉय से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हर आवाज को अपनी जगह मिलनी चाहिए और लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। एक्टर विवेक ओबेरॉय ने कहा, मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की बॉलीवुड अपडेट्स, जहाँ हमने बात की सना साइद की इमोशनल कन्फेशन की और सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक पर बॉलीवुड की प्रतिक्रिया की। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि कभी कभी ये समाज और जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर बात करने का एक प्लेटफॉर्म भी बन जाता है। याद रखिए दोस्तों, कि आर्टिस्ट आर द ट्रू रिवोल्यूशनिस्ट्स। तो चलिए अब बॉलीवुड अपडेट्स में सुनते हैं एक बेहतरीन संगीत सुनेंगे हम, क्योंकि सोनम वांगचुक की जब हम बात कर रहे हैं, आमिर खान का जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली थ्री इडियट्स जो फिल्म है दिमाग में आ ही जाता है। तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत सुने, हम सुनेंगे बहती हवा सा था वो। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम वांचो भाषा में समाचार, जिसके बाद हम फिर मिलेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के प्यारे से सेगमेंट के लिए। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।

अंजाव डिस्ट्रिक कृषि विज्ञान केंद्र के वी के होथम ए मनी डिस्ट्रिक मक्या होइल्यांग हिया खुपा नोकमा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR होथम अंक्या होथम पुली आच पुली होथम पुलिबन आचेट अंगपा फाउंडेशन डे पोंटुसो असो अपोले बोमा होम ए हजानी थेम अंग रिफ्लेक्टिंग ऑन 98 इयर्स Reimagining agriculture for Vikasit Bharat at 2047 le thamle haja tu so ma Indian zamot manjai holam asak azong achan amai pukuma ICAR hotam mokosa hudokya asuamai homokosat pho mo vanje kya bo ma district ma zamot manjai mi tham livelihood tingchong nok nyam phan tamtai le amai pukuma VKV tham mokosa ankya mau mamu technologies ya extension homokosat po mo chu vanazele boma tu so ma haja tu so to haka hai kya zamot manjai mi tham home app VKV hotam apu ano le pha ton kya hozan hozan zamot manjai holam ya technical hone je makang a kapalo te kya homokosat la po mo vanazele bakle kahoma ajang baja tu so ma haja jang jang mukya mihak sa azok te ku zangmat man jai mi tham boma kvk staff tham le haka hai de india ya england des ni ba ma izum abo pan le mo te kya azam match series one day international odi laka am cricket ba pan tu so ma maja england des cardiff honwei makya sofia garden ma abogya hotham anyang pa odi match ma england da india to ali wickets makanga lalle kahoma ajang baje ko le haja hotham azam abau ankya odi series ma india he england des ni tapong match lalle satana kaho evai

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम वांचो भाषा में समाचार, और अब वक्त है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के कार्यक्रम का। दोस्तों आज की इस सेगमेंट में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म हीरो रिबेल्स लव फ्रीडम का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले को।

0: दोस्तों चलिए हमारे इस नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले में लेते हैं एक रीजनल न्यूज ब्रेक। अब आप सुनेंगे इदु मिश्मी श्रोता का कार्यक्रम।
1: वांगचो श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं इदु मिश्मी कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर अचला पुचे जिहोलू मिट्टू बेली एतने चे ईद मिश्मी आहोला के जी दरगालंबो एतने ओ हुनु के बने चीफ मिनिस्टर सागा पेमा खांडू में ओना कैबिनेट मीटिंग चेनेगा महो गवर्नमेंट जोने मचे ई एच आर एम एस कानी पॉइंट ओ आयो पहा बदा आहोगा आप चीफ मिनिस्टर में बहा इनो मामरा हुखे यहो कानी मचिनु अजितला धोनी पोलो अशोक होटल अमुमा ने आसाएगा अजय पटियाना स्टेट गेस्ट हाउस टू आया पहा बदा आओगा आया पा चीफ मिनिस्टर में अरुणाचल प्रदेश मचे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दो ने एक अचुआ पूजे पोस्टल स्टाम गुखो आया पहा आओ बदा आओगा एतानी इंटरनेशनल जस्टिस डे इन एनागा मचे नि अतिकार मचे गाथो तो इमु के बाजी गा ता अतु तो अरुणदगा दा ने यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल में लाहेगादा आहोगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी एम में एतानुगा नीट यू जी एग्जाम मचे रिजल्ट लाहेगा बमा में होलो के लाख एग्जाम मे आनबर में एने आगुला कोर्स आजो आई तो जिगावे प्रा एगा बबुदा लाहोगा मेडिकल डेंटल आयुष दोने तमाकोशी किसा कोर्स आजो अहितता बाजीगाव एग्जाम मच रिजल्ट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी ए सी वेबसाइट माने अतु जिगा चिवदा ला होगा महो अनिहु लाख अनु आजो अहिता में इंडिया अतिका को कोचे अतिपु मो मंगा ने मंगा हु खे मचे एजर मंगा दोने माओ कापे ने कापे हु सेंटर ऐ दोने अहुता ची अतिपु हुलुपी माने नीट एग्जाम जुगा ही बचे तिराब दिसी बदनलुम तोसिक में बुने म्यांमार गो पोगा लाजू सर्किल माचे आती पहियानिंदो वाइब्रेंट ब्लेस प्रोग्राम बीबीपी को कोमा ने आए छे तो ने किसा प्रोजेक्ट जोगा ममा अतो ए बदा आहोगा आए छे सोगा चिपो पीडब्ल्यू डी माचे आजारम रोगो चिचा बने दिशी में रुआता आती पही आनंदो चे पोंकोंग आए छे बु अतो आई तो ने आती काचे लीडर तो ने किसा इमो पुया आलमरो को चिचाय बने आती पाही आनंदो ची आयाम ब्रो रूमेगा मा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अतु टिपगा उदा लाय बदा आओगा वेस्ट कमिंग दिशी डॉक्टर दिलीप कुमार में बुने बोम दिला तिको ने अतिका ची ताई ची अप्रोच पो मीटिंग ची नेगा ने ओ को मा मने यो बे ताई ची यारी सामी अप्रोच पो पंचायत लीडर नंबर में अतिका ची मु आला जी ना लाय बदा आओगा खेपकानी चा में अतिका से दे अखाउदा लाने जो ही मिवे अतिका ची इमु के बने थम्बु बम्बो के हो ने अतिका केशा आखा जी गावा शदा ने दिशी में लगाने अवता ची अथवा तोया करु दुया अतिका मा या तेगा नाव के बने अतिका से दे केशा आखा पु अरुंदगादा लगादा आओगा अतिका से दे अखावे पु इनु एजर का न्यो तारुमा चिनु अजितेला रोल आचू मैं चमा अतिकाची इमु में जोजीना ने दिशी में लगाने

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इदुमिश में भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां बात हम करते हैं दिल से दिल तक। चलिए अब हमारे जो हीरो फिल्म की नॉनस्टॉप म्यूजिक रिलेट है उसे वापस से वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लिया था ब्रेक। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आनंद आ रहा है और बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के दोपहर के प्रसारण सभा के अंत में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे तांसा श्रोताओं का कार्यक्रम तांसा भाषा में समाचार। दोस्तों, अब आपको एक सुरीले सफर पर ले जाने के लिए स्टूडियो पर पहुंच चुके हैं हमारे अगले आरजे, आरजे नूरी। तो मुझे यानी आपकी आरजे साथी बिंदु बिंदु मंच को दीजिए इजाजत। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजंग एवं तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103।

nung mo kau nang tangsung mai kachurang ra rongo rokhep te gari tung lam pa thok rau le mai lifestyle pa kalai re par ma tourist mai nei visitors mai pa nari so thok than ra ma keng tam nang waste management ma nari han rongo desi ra ro te aro solid waste management SWM rules 2026 pa tafang te ir rules ra waste pollution pa raising of han te panchayat walang hing ra mama jakawang singmung mai manai tatuk taklang moro nai parma solid waste asot tangwang khula jaga nang chup pa tangro waste management pa ahu ma kuri ma four color segregation dustbin pa apang serang moro dok DC ra panchayat walang hing moro te Anjau district कृषि विज्ञान केंद्र के वी के मनीषा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आई सी ए आर आईकर फाउंडेशन डे सकान पर रिफ्लेक्टिंग ऑन 98 इयर्स री इमेजिंग एग्रीकल्चर फॉर विकसित भारत 2047 मंगनांग होयलियांग किंगनांग नई खुपा किंगनांग सेरेंग फाउंडेशन डे सेरेंग नंग आईकर र इंडियन एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर पर सहंग म काउनांग ahu kam sumru man pa phan gu ta aro foundation day sereng ta prayu KVK staff mahiang kachu ta nang ma aro pagna suman mai wa khura karo khak thok ta ngoro ta prayu KVK ra Anjau district wang pag suman pa amai tayang mong ngoro pong pa phan technologies tam sehera man nai extension activities kamwang sumra man pa phan ko to aro kvk ra aling technical guidance kurau nai ho hai kurau re paksuman ma paksuman ra kvk ma ren bathu to men's cricket one day international odi khel nang manai rang ja england nai मनै रंजा इंग्लैंड मुंगनांग सोफिया गार्डन स्टेडियम नांग इंग्लैंड टीम नै इंडिया टीम तुंगनांग सेकंड ओडीआई टू टू प्रजु इंग्लैंड र फोर विकेट्स म चेरो सीरीज प 1-1 त्रयांग त रुंगरंग इतना थुमरो

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
2: श्रोता दोस्तों, तांसा श्रोताओं के समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और सफर में अब मैं हूं आप सबके साथ तीसरी प्रसारण सभा के साथ आरजे नूरी। दोस्तों कहते हैं ना कि हर नई शाम अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है, और जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो सीखते रहे, बढ़ते रहे। नमस्कार, आदाब और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। और अब समय हो चला है आज के थर्ड प्रसारण यानी कि तीसरी प्रसारण सभा का। तो दोस्तों सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी रेडियो साथी आरजे मंच को, जिन्होंने दूसरी प्रसारण सभा में अपनी शानदार अंदाज और बेहतरीन प्रस्तुति से आप सबका भरपूर मनोरंजन किया। उम्मीद है कि उनका साथ आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूं कि मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ भी ये तीसरी प्रसारण सभा आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको यह भी बता देना चाहूंगी कि जानकारी, प्रेरणा, संगीत और मुस्कुराहटों से भरे इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ आज मौजूद है प्रसारण अधिकारी श्री पी डोले तथा तकनीकी अभियंता कालो गोलो, जिनके सहयोग से यह प्रसारण आप तक निर्बाध रूप से पहुंच रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर से, और एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें होगा अपने प्रदेश की ताजा हलचल, देश दुनिया के इतिहास के रोचक पन्ने और जीवन को आसान बनाने वाली उपयोगी बातें, एक प्रेरक कहानी और साथ में आपके पसंदीदा सदाबहार गीत। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।
3: गुड इवनिंग ईटानगर।

0: दोस्तों, गुड इवनिंग। ईटानगर में अब वक्त हो चला है अपने प्रदेश की हलचल हालचाल जो आपसे रूबरू कराने वाले हैं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख बातें। नीति आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम ने हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और बजट प्रस्तावों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी परीक्षा 2025 में सफल 111 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रेरित किया। तिरप जिले के उपायुक्त ने भारत म्यांमार सीमा से लगे गांवों का दौरा कर विकास कार्यों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की प्रगति की समीक्षा की। मौसम और आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हाल के बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी शुरुआत हो चुकी है एक बेहतरीन सफर की आकाशवाणी के और एनएफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हमारे प्रदेश के हालचाल के बाद अब सुनने का वक्त हो गया एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और प्यारे से गीत के बाद हम फिर से लौट कर आएंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वन।

तोरण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के श्रोता दोस्तों, धुरंधर के इस धुरंधर गीत के बाद अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का। दोस्तों, आपको फिर से याद दिला दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी के तोरण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और आज के तीसरी प्रसारण सभा में मैं हूं आप सबके साथ आजे नूरी। दोस्तों, 17 जुलाई इतिहास कहती है कि इतिहास सिर्फ बातें कल की नहीं बल्कि आने वाली कल की सीख भी है। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1453 में कैसलिन की लड़ाई में फ्रांस की जीत के साथ लगभग 116 वर्षों तक चला 100 ईयर्स वॉर समाप्त हुआ। 17 जुलाई 1918 को रूस के अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय और उनके परिवार की हत्या कर दी गई, जिसने रूसी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर दिया। इतिहास के पन्नों में आगे, 17 जुलाई 1955 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में दुनिया के प्रसिद्ध थीम पार्क डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ। 1975 में अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के सोयुज अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़े। यह शीत युद्ध के दौर में सहयोग का एक ऐतिहासिक प्रतीक बना। जुलाई 1998 रोम स्टेट्यूट को अपनाया गया, जिसके आधार पर आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की स्थापना हुई। दोस्तों, इतिहास के पन्नों के बाद अब फिर से हो चला है चलने का गीतों के सफर की ओर। सुनते हैं अगला गीत।

गुड इवनिंग ईटानगर में आपने सुना बेहद ही खूबसूरत गीत फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान की आवाज में। दोस्तों अब वक्त हो चला है लाइफ हैक सुनने का, यानी कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी लाइफ हैक जो मैं अपने आप भी करती हूं। दोस्तों आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मोबाइल हमारे दिन भर का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है और इस बात से आप सहमत भी होंगे, क्योंकि इस वक्त भी आप अपने हाथों में मोबाइल लेकर गाड़ी चला रहे होंगे या मोबाइल पर बातें करते हुए गाड़ी चला रहे होंगे, क्योंकि मोबाइल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है ऐसा लगता है। ऐसे में अगर उसकी बैटरी बार बार जवाब दे जाए तो परेशानी होना स्वाभाविक है। तो लीजिए पेश ये आज का एक आसान सा लाइफ हैक। दोस्तों सिर्फ स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करना ही काफी नहीं होता है, कुछ लोग बैटरी लाइफ को एनहांस करने के लिए या जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने के लिए कुछ लोग बस यही कर देते हैं कि ब्राइटनेस को कम कर देते हैं, उसे काफी नहीं होता। अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर उन एप्स का बैकग्राउंड रिफ्रेश, ऑटो सिंक और लोकेशन एक्सेस बंद कर दीजिए जिनका आप नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों इस छोटे से बदलाव से बैटरी की खपत जो है ना वो कम होगी, फोन की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और बार बार चार्जर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। याद रखिए स्मार्टफोन तभी स्मार्ट बनता है जब उससे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसलिए स्मार्ट यूजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोन स्मार्ट लेकिन यू नीड टू बी स्मार्टर। ये आकाशवाणी का 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारी तीसरी प्रसारण सभा में कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, आप सबकी रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ। तो इस लाइव हैक के सुनने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनना बनता है, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते एक छोटी सी कहानी। एक किसान हर साल अपने खेत के सबसे अच्छे बीज अपने पड़ोसी किसानों में बांट दिया करता था। किसी ने हैरानी से पूछा, जब वे भी उन्हीं बीजों से अच्छी फसल उगाएंगे तो फिर आपका क्या फायदा होगा? किसान मुस्कुराया और बोला, हवा फूलों का पराग एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाती है, अगर मेरे पड़ोसियों की फसल अच्छी नहीं होगी तो उसका असर मेरी फसल पर भी पड़ेगा, इसलिए दूसरों की खुशहाली में ही मेरी खुशहाली छिपी है। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी मगर बहुत बड़ी सीख वाली कहानी से हमें जीवन की एक सच्ची सीख मिलती है, वो है जीवन में सच्ची सफलता वही है जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां और प्रगति लेकर आए। तो चलिए बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत। और श्रोता दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार। तो ये आकाशवाणी का एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ एक ऐसा स्टेशन जहां आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और दोस्त भी मिलेगा जिसके साथ आप मन की बातें कर सकते हैं गीतों के माध्यम से। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये आखिरी गीत।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की नेतृत्व वाली टीम अरुणाचल सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होटल डोनी पोल अशोक स्टेट गेस्ट हाउस 2 का उद्घाटन कर एक स्मारक डाक टिकट श्रृंखला भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिला उपायुक्त लाजू प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत म्यांमार सीमा से लगे दूरस्थ गांवों का दौरा कर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना का निरीक्षण किया। वेस्ट कामेंग जिला उपायुक्त डॉ दिलीप कुमार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM विषय पर आयोजित बैठक एवं जन जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही अन्य 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की नेतृत्व वाली टीम अरुणाचल सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम EHRMS 2.0 का शुभारंभ किया। ये प्रणाली डिजिटल शासन को और सशक्त बनाने, कार्यक्रम प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा सरकारी सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में सहयोग होगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 1982 में स्थापित होटल डोनी पोलो अशोक का भी उद्घाटन किया, जिसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त राज्य आतिथ्य गृह 2 यानी स्टेट गेस्ट हाउस 2 के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की वनस्पति, जीव जंतु, कृषि एवं बागवानी पर आधारित एक स्मारक डाक टिकट भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 67 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के नए चरण को देखा है तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल। इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिंद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभरा है। श्री मोदी ने कहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जिंद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।

0: भारत में ही डिजाइन एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग के देश में बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। जिंद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ यह हाइड्रोजन ट्रेन केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर से इसे डिजाइन खंड पर तेज भी रफ्तार पकड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार।
0: अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिला उपायुक्त बादोन लोम तावसिक ने लाजो प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत म्यांमार सीमा से लगे दूरस्थ गांवों का दौरा कर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित सड़क संरेखण सर्वेक्षण और निष्कर्ष तथा डायवर्जन के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी दी। उपायुक्त ने भूस्खलन संभावित पोंगकोंग मार्ग का भी निरीक्षण किया जहां बार बार होने वाले भूस्खलन के कारण आंतरिक सीमावर्ती गांवों की सड़क संपर्क व्यवस्था प्रभावित होती रहती है। उन्होंने गांवों के बुजुर्गों, सामुदायिक नेताओं और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जन सेवाओं में सुधार लाने के निरंतर प्रतिबद्ध है। वेस्ट कामेंग जिला उपायुक्त डॉ दिलीप कुमार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM विषय पर आयोजित बैठक एवं जनजागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने गांवों और समुदायों में उचित कचरा प्रबंधन के प्रति सक्रिय रूप से जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उपायुक्त ने कहा है कि प्रभावी कचरा प्रबंधन केवल सामूहिक जनभागीदारी से ही संभव है और स्वच्छता तथा पर्यावरण स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यापक जन सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क, बदलती जीवन शैली तथा पर्यटकों और आगंतुकों की बढ़ती संख्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी कचरा प्रबंधन की गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बढ़ते कचरा प्रदूषण से निपटने के लिए इन नियमों में कड़े प्रावधान और न्यायिक निगरानी का प्रावधान किया जाना चाहिए। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों अपर सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, शी योमी और अपर सुबनसिरी को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही कुरुंग कुमे, पापुमपारे, अंजाव, लोहित, चांगलांग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मेडोनेशिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जानोवस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA के निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती और नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।

0: on solid waste management and urged the panchayat leaders to actively sensitize their respective villages and communities for proper waste management practices. DC Kumar states that effective waste management can only be achieved through collective community participation and appealed for mass involvement in maintaining cleanliness and environmental sustainability. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं नौकटे श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ रंजा वन बंगा जी संप्रधान नानक टे खबर चौता है एजा जुलाई जंग छिवन एक तारीख हुकुट बाजा खबर चौको हन जाफन ताजामा अरे खबर है चौतार मंगन Chief Minister Pema Khandu team Arunachal Government hai taja office na pai chi rang pa pa jaw dangai ka adi go cabinet ngo twinta ko taja digital governance parong seat personal administration pa streamline hon le government services na efficiency la transparency pa essential ram electronic human resource management system 2.0 pa lusi ko ba jaw adi go Khandu ma 1982 rang pa ko hotel Doni Polo Ashok nga ma chi dang thapa state guest house 2 nga ma मिंगलो से को बाजा अरे को खांडू अरुणाचल प्रदेश व फ्लोरा फाउना ले एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर नंग पोस्टल स्टाम्प सर्विसेस पर मिंगलो से को बाजा गाम जो चो जट बेगा यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल मा दियाक्वा मिन्यान ही नंग जुलाई चंग छिवन नी तारीख को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस गामा रंगमानी रंगोजा को ग्रीटिंग्स पर चो जोना बाजा अधिको मेघवाल में सोशल मीडिया पोस्ट में इक्विटेबल कंपैशनेट हासंग होन पर अंगांगा रेस्पॉन्सिबिलिटीज चौंगा में चोटों को बाजा अधिको इक्वल अपॉर्चुनिटीज फेयर सिस्टम रा ह्यूमन डिग्निटी पर रेस्पेक्ट होन रंग हासंग पर होन रंग प्लेस पर होन रंग में चोटों को बाजा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA है मा NEET UG 2026 री एग्जाम रिजल्ट पर लालूसित को ताजा अधिको छीवन थे लाख रंग कैंडिडेट से undergraduate medical dental ayush le are rang rang ahan he na admission rang jo pass dangai ka adi ko candidate se ma mato chota card pa official website ko tonga jo ngam jo chotho ko ka adi ko thapa india wa cha banga ro banga ban the cities le media kwa chiban bli cities wa ha cha banga cha bli ngala ro bli center se dang he nam rok ni lak rang candidate se ma exam pa ko wa jo ngam jo chotho ko ka तिरप डिप्टी कमिश्नर बादनलोम तौसिक मजा लाजो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल खानवा इंडो म्यांमार जा रिहा डांग वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम VVP खान को कड़ा काम सोले काले लम्ही पोंजे एजेट वंग वाजो अधिको अरे विजिट वंगता को PWD ऑफिशियल सीमा लम डाइवर्जर रंग सर्वे कौन डाले गुनसा सीट का ही नंग चोटो को वाजो अधिको DC में पोंगकोंग वा हारुजु ठहे मिन पोंसो वाजो अधिको DC में हादावा फन नंग हुंचिक हासों व लीडर ले ए नंग व सों ते हिदम नंग इन ची अलामिन वाजो नाम मिन चो ठो को जो रेगा दलाहे वन डे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट लोमेका को होस्ट इंग्लैंड हेमा इंडिया ही वन बली विकेट्स में जो जीने का एडी को वन रन मैच सीरीज को वन रिमैच पर लाजिन वक्ता जो नाम जो चो ठो को एगा अंजाव कृषि विज्ञान केंद्र KVK हेमा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ही रोग एक हुए ने सेटल ऑफ फाउंडेशन रामोपा खुपावा होयलियांग हाडांग को रिफ्लेक्टिंग ऑन 98 इयर्स री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर फॉर विकसित भारत एट 2047 थीम दमनंग मानी वाजा अधिक और मानी ताको इंडिया ही एग्रीकल्चर पर रंग से रंग ICAR हेमा असल मो काम मोता ही नंग चुजटक वाजा अधिकर प्रोग्राम को रोकने वाय रॉपिंग मोड टेल है KVK स्टाफ ही में पाठ का वक्त आ जाओ अधिकर डिस्ट्रिक्ट वा पिंग मोड टेह लेवलीहुड पर असंस ड्राम KVK है में अजाज जा टेक्नोलॉजीज ले एक्सटेंशन एक्टिविटीज मौका का है ना में चोटों को वा जाओ तो जाना नोक देखो बड़ा तो जाओ लाथो नंग था
3: अरे कबंग से असु प्रोग्राम को नासे पनकावा रुन्या से चुतार मंगन

0: समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।
1: तो श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के रेन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी, अंग्रेजी तथा नुक्ते भाषाओं में समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में। जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए मेरे साथ यानी आप सभी के रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ, आप सभी के बहुत ही चहेते कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ आपके चहेते चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो दोस्तों, मैं हूं आप सभी की अपनी आरजे नूरी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ इवनिंग ड्राइव। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में शायद हम सभी ने कभी न कभी किसी को पूरे दिल से चाहा है, किसी के साथ भविष्य के सपने देखे हैं, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराए हैं और यही सोचा है कि ये साथ हमेशा रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। फोन की घंटियां खामोश हो जाती हैं, मैसेज आने बंद हो जाते हैं और जो इंसान कभी हमारी हर खुशी हर परेशानी का हिस्सा था, वो अचानक सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। दिल टूटने की सबसे मुश्किल बात सिर्फ किसी का चले जाना नहीं होता, बल्कि उस खालीपन के साथ जीना सीखना होता है जो उसके जाने के बाद रह जाता है। और ऐसे फीलिंग को हमने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव में जरूर महसूस किया होगा। अगर आज आपका दिल भी किसी बिछड़ने के दर्द से गुजर रहा है, अगर कोई याद आज भी मुस्कुराने नहीं देती या फिर आप बस किसी को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का इवनिंग ड्राइव आपके लिए है, हम सब के लिए है। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे उस दर्द की जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता, लेकिन संगीत उसे बहुत बेहतरीन तरीके से खूबसूरती से बयां कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे गीत से, न जाने कितने दिलों को और कितने दिलों की खामोशी को अपनी आवाज दी है। बेहद ही खूबसूरत गीत ए दिल है मुश्किल से।

दोस्तों कहते हैं जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर किसी और से दूर जाना नहीं है, बल्कि खुद को फिर से ढूंढना होता है। हार्ट ब्रेक्स या सिर्फ किसी रिश्ते का खत्म होना नहीं है, यह उन वादों का टूटना है, उन सपनों का बिखरना है और उन उम्मीदों का अचानक खामोश हो जाना है जिन्हें हमने पूरे दिल से संजोया था। अगर इस वक्त आपका दिल भी किसी बिछड़ने की टीस से गुजर रहा है और अगर आप कोई बार बार याद आ रहा है और उसकी यादें दस्तक दे रही हैं, तो यकीनन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। यह एक ऐसा संगम जहां टूटे दिलों का मेला लगा हुआ है। दोस्तों कहते ना कि दिल टूटने का दर्द शायद दुनिया के सबसे गहरे दर्दों में से एक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दिल टूट सकता है लेकिन आपका आत्मसम्मान कभी नहीं टूटना चाहिए। किसी का आपको छोड़ देना आपकी अच्छाइयों को कम नहीं कर देता। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। रोना हो तो रो लीजिए, अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए, क्योंकि जो दर्द महसूस किया जाता है वही धीरे धीरे भरता भी है। दर्द को दबाने से नहीं, उसे स्वीकार करने से हीलिंग शुरू होती है। अब सुनते हैं ऐसा गीत जो हर उस दिल की कहानी कहता है जिसने कभी किसी को पूरी शिद्दत से चाहा है। श्रोता दोस्तों आपके फिर से याद दिला दूं कि अगर आप जूझ रहे हैं दिल टूटने से यानी कि हार्ट ब्रेक से, तो दुनिया में आप अकेले नहीं हो, कई सारे लोगों के दिल टूटे हैं। लेकिन बात ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को टूटने मत देना, अपने अपने सम्मान को कभी टूटने मत देना। चलिए आपके लिए खास ये गीत आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

दोस्तों, हर दिल जो दर्द से भरा हुआ है उसकी आवाज अरिजीत सिंह की आवाज में आपने सुना छिछोरी फिल्म की इस खूबसूरत गीत को। दोस्तों, कभी कभी हम किसी रिश्ते के टूटने के बाद सबसे पहले खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये सोचते हुए या ये कहते हुए कि काश मैंने ऐसे किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैंने ये बोला नहीं होता, काश मैंने उस वक्त इस चीज को अपनाया नहीं होता। काश काश काश काश, कितने सारे काश, या काश मैं और बेहतर होता या होती। दोस्तों, अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। हर रिश्ता सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं टूटता, कुछ रिश्ते इसलिए भी बिखर जाते हैं क्योंकि दो लोग अलग अलग रास्तों पर चलने लगते हैं। इसलिए अपने आप को कटघरे में रखना छोड़ दीजिए, अपने आप को माफ कर दीजिए। कहते हैं ना, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, यही सेल्फ लव है, यानी कि अपने आप को कटघरे में किसी के रिश्ते या किसी भी रिश्ते को टूटने से या किसी के चले जाने से जो अपने आप को खड़ा करते हो उसे आप बाहर निकालें और अपने आप को माफ कर दें। गलती इंसान से होती है, चाहे वो उस इंसान से या आपसे, है ना। अगर आप उसको माफ कर सकते हो, अपने आप को भी माफ कर सकते हो। अपने आप को माफ करें, इस रिश्ते के टूटने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि नई शुरुआत होगी। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़े। तो श्रोता दोस्तों, बने हुए मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफ एम पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आज इवनिंग ड्राइव में हम बातें कर रहे हैं हार्ट ब्रेक्स।

के बारे में। हार्ट ब्रेक्स होता है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, हर रिश्ता मंजिल नहीं पहुंचता, लेकिन अपने आप को वही छोड़ देना गलत बात है। वहां से निकाले, अच्छी मंजिल की तलाश करें, खुशियों की तलाश करें। इस उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, इस गीत को सुनते सुनते ये भी कहते चले कि हीलिंग कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक सफर है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन मुश्किल होंगे और यह बिल्कुल सामान्य बात है। अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, नई चीजें सीखिए और सबसे जरूरी अपने आप से दोस्ती कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद को या खुद से प्यार करना सीख लेते हैं उस दिन किसी और के जीने जाने का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी अभी भी हमें नए आसमान दिखाने के लिए तैयार है।

श्रोता दोस्तों, हर ब्रेक के बाद अक्सर ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि हर

0: यानी कि हर एंडिंग किसी नई शुरुआत का दरवाजा होता है। शायद इसी दर्द की वजह से आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, समझदार हो जाएंगे। शायद इसी सफर में आप खुद को पहले से बेहतर पहचान पाएंगे। आज से एक छोटा सा वादा कीजिए अपने आप से, अपने सपनों को किसी एक इंसान से मत जोड़िए। अपनी खुशी की चाबी हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किताबें पढ़िए, सफर कीजिए, नई जगह को देखिए, अपने शौक पूरे कीजिए और हर दिन अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी जुदाई हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकती। तो आंसू पोछे, दिल थाम कर और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर आगे बढ़े, पंख फैलाए और कहे लव यू जिंदगी।
1: Blackmail your present to ruin a beautiful future.

0: जिस रिश्ते ने आपको दर्द दिया है वही रिश्ता आपको अपनी असली ताकत पहचानने में मदद कर सकता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, और यकीन मानिए अभी आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय यानी कि नई शुरुआत लिखना बाकी है। अपनी मुस्कान को वापस आने का मौका दीजिए, उम्मीद का हाथ थामे रखिए और हर नई सुबह का स्वागत कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं एक ऐसे ही गीत से जो हमें याद दिलाता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, जिंदगी का साथ और प्यार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस गीत के बाद दोस्तों आपको लिए चलेंगे शाम की महफिल में। आज की शाम हम कैबरे के साथ बिताएंगे, तो बने रहे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, अरुण एफएम पर 103.1 मेगाहर्ट्ज़, अरुण एफएम पर जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।
1: सबसे अलग मेरी बात सुनते हो, मुझे ओनली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
2: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

तो दोस्तों, इवनिंग ड्राइव के बाद हार्ट ब्रेक्स के बारे में इतने सारी जानकारियों के बाद और अपने आप को बेहतर बनाने के बाद और महसूस करने के बाद, आइए चलिए नाचते हैं, झूमते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं कैबरे सॉन्ग्स के साथ। पहला ही गीत है सुनिधि चौहान की आवाज में पानी पानी, जिसे लिखा है कौस्तव नारायण नियोगी ने और इस गीत को संगीत से सजाया है कौस्तव नारायण नियोगी और मुनीश माखीजा ने।

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए

0: ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ डीडीएमए कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न दे। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं डीईओसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

तो श्रोता दोस्तों बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुण एफएम पर जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। दोस्तों ये एक ऐसा चैनल है जहां आप सुन सकते हैं गीत गानों के साथ साथ किस्से कहानियां, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और अपने अरुणाचल की लोक भाषाओं में समाचार और कई सारे लोकगीत। दोस्तों इस वक्त आपके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ आप सभी के वीडियो साथी आरजे नूरी और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ऐसे गाने जो हमारे दिल की जुबान होती है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम अपने जो इमोशंस हैं उसको बयान नहीं कर पाते शब्दों में। एक जमाना था जब हम चिट्ठियों के द्वारा अपने इमोशंस को लिख भेजते थे और वो चिट्ठियों का आना, फिर चिट्ठियों का जवाब जाना और इसके बीच का इंतजार और मीठा सा एहसास। वो खैर आज के जमाने में वो तो खत्म हो गया, लेकिन गाने आज भी वैसे ही है और आज भी ऐसा लगता है कि ये कोई पुराना नहीं बल्कि आज के इमोशंस को बयान कर रहे हो। चलिए हिंदी फिल्मी गानों में सुनते हैं ऐसे ही कुछ गीत जो हमें या तो यादें, पुरानी यादें ताजा कर देगी या किसी एक ऐसे इमोशन को बयान करने में मदद कर देगा। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर भारत की धड़कन को किसी एक चीज में महसूस करना हो तो वो बस हिंदी फिल्मी गीत सुन लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम अपनी जिंदगी को हिंदी फिल्मी गानों और फिल्मों के बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। इतना असर है और इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में हिंदी फिल्मी गानों का और हिंदी फिल्मों का। दोस्तों हमारी हंसी में भी गीत है, हमारे आंसुओं में भी गीत है, हमारे त्योहारों में भी, हमारी शादियों में भी, और कभी कभी तो हमारी खामोशियों की आवाज भी कोई गीत ही बन जाता है। दोस्तों हिंदी फिल्मी संगीत ने पिछले 9 दशकों में न जाने कितने रंग देखे हैं। कभी मोहम्मद रफी की साहब की, लता मंगेशकर जी की, किशोर कुमार और आशा भोसले जैसे महान कलाकारों की जादुई आवाजों ने दिल पर राज किया। फिर दौर आया उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह जैसे गायकों का। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, वो है हिंदी फिल्मी गानों का जादू। जी हाँ, आज भी हमारे जो यंग जनरेशन है वो भी पुराने गानों को रिमिक्स करके या रिक्रिएट करके सुनते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पुराने गानों का जादू। और आज के गानों में वो समाज का आईना देखना, पुराने गानों में उसी समाज के, उसी दौर के समाज के आईना में झांक कर देखना, यही तो है हिंदी फिल्मी गाने। हमारे जो डिफरेंट जनरेशन से उसको जोड़ने का भी काम करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हिंदी फिल्मी गाने बस गाने नहीं होते, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे दोस्त है, हमारे बुजुर्ग है जो हमें सलाह देता है, मशवरा देता है और हमें जिंदगी का पाठ पढ़ाता है। चलिए ऐसे ही एक और सफर हो जाए आप सबके साथ, यानी हमारे श्रोता दोस्तों के साथ आरजे नूरी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

तो श्रोता दोस्तों, आप बने हुए मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। अरुण एफएम जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से, और इस सफर में हम सुन रहे और आपको भी सुनवा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी फिल्मी गानों का जादू हम हिंदुस्तानियों पर तो है ही, लेकिन आज के जमाने में दुनिया भर के लोगों पर भी जादू चला रखा है। इसलिए आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि हमारे जो आइकॉनिक सॉन्ग्स है उन गानों का रिक्रिएशन होता है। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। यही है हमारे हिंदी फिल्मी गानों का जादू। तो कहते ना कि आज का संगीत पहले से ज्यादा आधुनिक हो गया है। नई टेक्निक है, नई धुने हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, रैप है, फ्यूजन है, और दुनिया भर के संगीत का खूबसूरत मेल भी है। और इसी बदलते दौर में एक नया चलन भी खूब देखने को मिल रहा है, रिक्रिएशन का, रिमिक्स का और रीइमेजिनिंग का। पुराने सदाबहार गीतों की को नई धुन, एक नई संगीत और एक नए अंदाज के साथ फिर से पेश किया जा रहा है। इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात हम हिंदुस्तानियों के लिए हो ही क्या सकता है, है ना। जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर और सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने, तो अपना सीना बड़े गर्व से चौड़ा कीजिए और बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर कहिए कि मेरा भारत देश महान और हमारी हिंदी फिल्मी गानों की जय। जी हाँ दोस्तों, कुछ गानों को लोग दिल से अपनाते हैं तो कुछ के बारे में कहते हैं पुराने गाने की ही बात कुछ और थी, और वही बात साजन फिल्म के इस गीत को सुनकर भी कहते हैं कि कुछ सॉन्ग्स ना नेवर गेट ओल्ड, कहते हैं हमारे श्रोता। आज के जमाने के जेंजी भी कहते हैं कि सर्टन सॉन्ग्स स्पेशली फ्रॉम द 90s दे आर एवर ग्रीन, अपनी भाषा में कहते हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स को आप सुन सकते हैं बेझिझक, बेहिसाब, बस एक ही चैनल पर, अरुणाचल में आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और सफर में आज के तीसरे प्रसारण सभा में मैं हूं आप सबकी रेडियो साथी आरजे नूरी। तो दोस्तों, यही तो है हमारे संगीत की खूबसूरती। हर पीढ़ी अपने अंदाज में उसी धुन से जुड़ जाती है। कई युवा पहले रिमेक सुनते हैं, फिर उसी बहाने उस गीत के मूल संस्करण तक यानी कि ओरिजिन तक चले जाते हैं। और कई सारे हमारे जो श्रोता हैं YouTube पर जाकर सुनते हैं और कहते हैं कि वाओ, दैट्स फैंटास्टिक, हम तो सोच रहे थे कि हमारे जमाने का गाना है, ओरिजिनल तो हमारे रिमिक्स वर्जन से बेहतर है, बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर कि अरुण एफएम पर हमने ये गीत सुना और हम फिर से वापस YouTube पर जाकर सुने तो बड़ा अच्छा लगा। हमारी कोशिश यही है संगीत से जोड़ना हर किसी को और दिल से दिल की बात कहना संगीत के माध्यम से। इस वक्त भी हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ी हुई है आलो से। उन्होंने सुनना चाहा है ऐसे क्यों गजल वर्जन में। फिलहाल वो प्लेलिस्ट मेरे प्लेलिस्ट में फिलहाल नहीं है, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत और इस गीत के

0: Pare Hydropower Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
0: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
0: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
0: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
0: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण FM पर, जहां आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गानों का कार्यक्रम फिल्मी सॉन्ग्स विद RJ नूरी। दोस्तों, हर जगह हिंदी फिल्मी संगीत अपनी अलग पहचान बना चुका है। कई विदेशी लोग हिंदी भाषा नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन गीतों की धुन, उनका संगीत और उनका भाव उन्हें भारत से जोड़ देता है। यही वजह है कि हिंदी फिल्मी गाने आज सिर्फ मनोरंजन नहीं, भारत की संस्कृति का पहचान, हमारी भावनाओं की भाषा और दुनिया को जोड़ने वाला एक खूबसूरत संगीत सेतु बन चुका है। तो आज इसी संगीत यात्रा में हम भी निकल पड़ते हैं कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ सदाबहार और कुछ नए रंग में सजे हुए इन गीतों के साथ, जिन्होंने न सिर्फ हमारी जिंदगी को सुरों से सजाया बल्कि पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि जब दिल की बात करनी हो तो संगीत ही सबसे खूबसूरत भाषा समझ जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, आइए आगे सुनते हैं

तो श्रोता दोस्तों, इस गीत को सुनते सुनते आपको ये भी याद दिला दूं कि कुछ ही पलों में यानी कि 6:30 पर आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। तो बने रहे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 MHz पर। और आपको ये भी बता दूं कि इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गाने यहीं पे समाप्त होता है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आदि श्रोताओं की समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ चलने को एक और नए सेगमेंट के

दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ हिंदी फिल्मी गाने। आदि श्रोता के समाचार से पहले अब वक्त हो चला है एक और नए सफर का, यानी कि एक और नए सेगमेंट का। और आज हम आज के कलाकार सेगमेंट में सुनेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने एक ही झलक में सबका दिल जीत लिया अपनी प्यारी सी मुस्कान से। कहते हैं ना, फिल्मी दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि अपने किरदारों में जिंदगी भर देते हैं। आज की हमारी खास पेशकश में हम समर्पित कर रहे हैं इस सेगमेंट को बॉलीवुड की चुलबुली, बेबाक और बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री प्रीति जिंटा को। 31 जनवरी 1975 को शिमला में जन्मी प्रीति जिंटा ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। बहुत कम उम्र में पिता को खो देना और परिवार की कठिन परिस्थितियों का सामना करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन शायद यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और क्रिमिनल साइकोलॉजी की पढ़ाई की। फिल्मों में आने का उनका कोई सपना भी नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1998 में दिल से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। छोटा सा रोल लेकिन प्रभाव इतना गहरा कि हर कोई इस नई अभिनेत्री को नोटिस करने लगा। और उसी साल आई फिल्म सोल्जर और उस फिल्म ने उन्हें लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और उन्हें मिला फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड। तो दोस्तों, प्रीति जिंटा से जुड़ी बातें आप सबके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज के कलाकार में हम बातें कर रहे हैं प्रीति जिंता की। दोस्तों, प्रीति जिंता की सबसे बड़ी खासियत रही उनकी अलग और साहसी किरदार। फिल्म क्या कहना में उन्होंने एक अविवाहित माँ की भूमिका निभाकर समाज की सोच को चुनौती दी। ये करना बहुत मुश्किल था, एक टीनेज मदर का रोल प्ले करना बहुत हिम्मत वाली बात थी, लेकिन ये तो प्रीति जिंता थी, उन्होंने तो चैलेंज लेना था, ले लिया और लोगों ने बहुत तारीफ की। उस दौर में ऐसा विषय चुनना काफी साहस की बात थी, और प्रीति ने ऐसे बेहद संवेदनशीलता से और बड़े ही एक्यूरेसी के साथ उन्होंने इस किरदार को भी निभाया। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर एक से एक यादगार फिल्मों में काम किया। दिल चाहता है, कल हो ना हो, कोई मिल गया, वीर जारा, सलाम नमस्ते, कभी अलविदा ना कहना, हर फिल्म में उनका अंदाज नया था, कभी मासूम, कभी आधुनिक, कभी भावुक, लेकिन हमेशा दिल को छू लेने वाला। कल हो ना हो में निभाया गया नैना का किरदार आज भी दर्शकों के दिल में बसा हुआ है, और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ही एक गीत।

दोस्तों, प्रीति जिंटा अभिनेत्री होने के साथ साथ एक सफल बिजनेस वूमन भी है। वो आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की सहमालकिन है और खेल की दुनिया में भी अपनी खास पहचान रखती है। साथ ही वो सामाजिक कार्यों और महिला सशक्तिकरण से जुड़े अभियानों में भी सक्रिय रहती है। उनकी एक और खास बात, उन्होंने हमेशा खुलकर अपनी बात रखी, सच का साथ दिया और हर परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखा। दोस्तों, प्रीति जिंटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में मुस्कान सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं होती है, बल्कि हिम्मत और सकारात्मक सोच की पहचान भी होती है। तो दोस्तों, आइए आज के कलाकार के खास फिल्मों में से एक और गीत आप सबके लिए।

दोस्तों, आज के कलाकार में हम सुन रहे हैं आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज के कलाकार में प्रीति जिंटा के कुछ हसीन नगमे। आइए चलिए सुनते हैं अगला गीत, और इसी गीत के साथ ही आज के कलाकार यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दो कि आप बने रहे आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, क्योंकि एंटरटेनमेंट का ये सफर जारी रहेगा। और कुछ ही पलों में ठीक 7 बजते ही आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार।

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप आनंद उठा रहे थे हिंदी फिल्मी गाने। हिंदी फिल्मी गानों का सफर जारी रहेगा और कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गानों का सफर, लेकिन विद अ ट्विस्ट। विद अ ट्विस्ट क्यों? क्योंकि अगला जो कार्यक्रम है वो ऐसे कार्यक्रम है जहां हमारे श्रोता देश भर से जुड़ते हैं, फोन करते हैं और फोन के माध्यम से हमारे इस खूबसूरत चैनल पर सुनते हैं अपना मनपसंद गीत। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हेलो फरमाइश की।

आपके अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों के एक कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जहां देशभर के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और सुनते हैं अपना मनपसंद गीत। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पसंद के सुरीले नगमों और खूबसूरत एहसासों के साथ कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश,
0: नमस्ते,
1: हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश
2: जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे
1: जी, जी जी राधे राधे
2: जी। हमारे दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे हैं
1: जी। जी जी अनूप दा, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ
2: जी। जी
1: जी,
2: तो दोस्ती जिंदगी का खूबसूरत लम्हा है, जिसे मिल जाए तन्हाई में भी खुश, जिसे ना मिले भीड़ में भी अकेला। और मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट से श्री भूमि, आसाम से तालुका है
1: जी। जी जी,
2: है ना। क्या हुआ मेरे दोस्त, मैं दो मोबाइल से ट्राई कर रहा था।
1: अच्छा जी।
2: एक मोबाइल है बड़ा मोबाइल, 5G का है, और दूसरी है वो जियो भारत का।
1: अच्छा।
2: लेकिन क्या होता है, मतलब हमारे दोस्त से बातचीत तो जियो भारत से हो रहा है, मेरे साथ आपसे बातचीत हो रहा है जियो भारत में।
1: अच्छा।
2: तो दिक्कत क्या होता है, जियो भारत में थोड़ा बहुत साउंड के कोई प्रॉब्लम है क्या? साउंड का कोई प्रॉब्लम आप दिखाई दे रहा है?
1: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है आपका आवाज।
2: जी जी जी,
1: बहुत ही बढ़िया आवाज।
2: ट्राई कर रहा था बड़ा मोबाइल से आपसे बातचीत करने का।
1: अच्छा।
2: भाग्य इतना सुप्रसन्न नहीं है
1: जी,
2: लेकिन ये आखिरकार आपने मेरा बातचीत सुन लिया
1: जी। जी जी।
2: और आज के गाने का मेरा फरमाइश है, फिल्म का नाम है रात और दिन।
1: ओके।
2: और गाने का बोले से, दिल की गिरह खुल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ, मैं फिल्म में अब कौन है, अजनबी मेरे पास आओ, ऐसे करके गाने हैं
1: जी। बहुत ही एवरग्रीन सॉन्ग है,
2: बढ़िया गाने
1: जी
2: है मेरे दोस्त,
1: एवरग्रीन सॉन्ग है
2: जी। कुछ और कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
1: हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी,
2: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे जिसका नाम है बके बागेरा जी,
1: बहुत
2: और सेकेंडली हमारे नूरी मैडम के लिए, और है लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश, और है पुरुषोत्तम कुमार जी फ्रॉम कश्मीर, और है अमर सिंह साहू जी, श्रीकांत जोशी जी, विजय सिंह लखेरा जी, और हमारे धर्मनगर से मेरे छोटे भाई अविनाश जी और प्रेमजीत चक्रवर्ती जी के लिए, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं। वो एकदम भूल गया, हमारे आसाम के एक कच्चे कलाकार है, उसका नाम है अमल बसुमतारी जी के लिए।
1: हाँ जी,
2: है ना
1: जी। जी जी बिल्कुल।
2: और बहुत अच्छा लगा दोस्त आपसे मेरा बातचीत हो गया, तो चलिए बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ। बहरहाल आज जगन्नाथ रथ यात्रा है।
1: जी जी जी जी बिल्कुल। जय जगन्नाथ,
2: जय जगन्नाथ जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं दिनेश शर्मा कैसू
0: जोरहाटर पर। दिनेश शर्मा ओके, कॉल करें बहुत बहुत भल लगे। की करे आपनी?
1: मैं ट्रांसपोर्टर सिक्योरिटी गार्ड कर।
0: अच्छा ओके ओके,
1: नाजी घर पालोह बर्तमान घर
0: आज। अच्छा ओके, अपनी कल पर पाले नम्बर तो आमार?
1: मैं अपना हरदूर पर फोन नम्बर ललो।
0: अच्छा अच्छा, अपनी आमार प्रोग्राम तो हुने न?
1: কর্মকর্তা
0: ওকে, তো দিনেশ দা কল করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। শুনো আপনার।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, शेख जफर हसन, क्वाद जिला रोहतास, बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जफर साहब,
1: आपके दिल से मैं कह रहा हूँ, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ कि एक ईटानगर में एक बेहतरीन उद्घोषक से मैं बात कर रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो सुन लीजिए।
0: हाँ जी।
1: कि हमने सीने से लगाया, दिल न अपना बन सका, मुस्कुरा कर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: यह तो बिछड़ने वाली ऊपर वाली बात थी, मतलब क्या रहा।
0: और अगला शेर।
1: दुश्मन है जमाना तो कोई बात है मुझ में, हर शख्स का दुश्मन ये जमाना नहीं होता।
0: हर शख्स का दुश्मन ये जमाना नहीं होता।
1: जी
0: क्या बात है, क्या बात है। शेख साहब कहाँ से ढूंढ लाते हैं आप अपने बेहतरीन शायर। आपकी शायरी और आपसे तो हमें प्यार हो गया है शेख साहब।
1: जी भी प्यार हो गया, आपसे भी प्यार हो गया है।
0: जी
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी सर। तो और फिल्म का नाम मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ।
0: जी
1: मोहम्मद रफी ने गाया था, तो दो लाइन सुन लीजिए।
0: हाँ जी बिल्कुल। जी जी।

0: हम ढले तब याद हमें भी कर लेना।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: ये शेर से टच गाना सा
1: जी
0: जो सुनाया।
1: जी जी जी, इतने बेहतरीन गीत, और आप हमेशा पुराने गीतों को ही फरमाइश करते हैं, तो शेख साहब हम जानना चाहेंगे आपसे
0: इसकी वजह है, बता देता हूँ।
1: हाँ जी जी बताइए। जी जी बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं पुराना श्रोता रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। हमारी क्लब का स्थापना हुआ था केसरी रेडियो सोराता सन 1970 में।
1: ओके जी।
0: जिसमें कि दो हमारे श्रोता मर गए, बाकी जिंदा है, सब बाहर में है।
1: अच्छा।
0: मैं एक दोस्त और है, बस स्क्वाड में 12-14 हजार की जनसंख्या है हमारी बस्ती की।
1: अच्छा अच्छा।
0: बाकी बाहर में लोग हैं। और जाते 1973 से श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हिंदी सेक्शन कोलंबो 7 एक पता पर, और ऊपर में जो फरमाइश होती थी बिजली प्रोग्राम का नाम अध्यक्ष करते सब जाता था। 1973 से लेकर 2000 तक तो मैं आपको श्रीलंका से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए कि जो श्रोता इसमें भाग ले रहे हैं वो भी श्रीलंका से जुड़े हुए, तो हमारी बात को काटेंगे नहीं।
1: अच्छा जी,
0: हमारी बात इत्तेफाक भी करेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: उसके बाद तो उसका जमाना था, आकाशवाणी में तो धूम मचाए हुए थे हम।
1: अच्छा।
0: आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ आपको रेडियो स्टेशन, सरकारी रेडियो स्टेशन या गैर सरकारी या प्लस पोस्टकार्ड का, आपकी पसंद जो है या पसंद आपकी जो भी है आपकी प्रवेश पर मैं जुड़ा हुआ हूँ। और पुराना हम है किसी पुराने ही गाने को मैं पसंद करता हूँ।
1: जी जी जी,
0: लेकिन पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना।
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जी जी जी जी,
0: सबका एक ख्याल नहीं रह सकता है, बात रह सकती है, हाँ हाँ पसंद होती है। तो बोगरा साहब है ना?
1: हाँ जी, मैं बागरा बोल रहा हूँ। जी जी
0: बागरा, जी जी
1: जी, आपको याद है मेरा।
0: वहाँ के आप रहने वाले हैं और कितना अच्छा आप बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, साफ बोलते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
0: हाँ जी जी, तो अब हम बता देते हैं, इसमें एक लाइन आउट जोड़ता हूँ।
1: जी बिल्कुल।
0: जो जो पहला दोस्त का नाम जो मैं ले रहा हूँ वो इंटरनेशनल श्रोता है जी, वो उनका नाम है उस्मान अली अंसारी, अशपुरा मऊ के उत्तर प्रदेश।
1: ओके
0: जी, ये इंटरनेशनल श्रोता है जी, तो इन्होंने भी इनाम भी जीता है, वॉइस ऑफ जर्मनी, चाइना, मतलब की CRI चाइना रेडियो इंटरनेशनल, और शिवर रेडियो, ये तीन जगह से उन्होंने प्राइज भी जीता है।
1: क्या बात है, क्या बात है
0: जी, जी, जी। और सम्मेलन भी इनाशोरों का देश विदेश का वो मऊ में करा चुके हैं।
1: अच्छा
0: जी जी, से हमसे रब्ता जो है, अगर इनकी मोबाइल नंबर अगर कोई सोचा चाहे अगर हमसे रब्ता करे तो मैं दे सकता हूँ।
1: जी जी जी, से
0: उस्मान अली अंसारी बताएंगे।
1: ओके
0: जी जी जी, ऐसे दोस्त। और ये एक अब दोस्त जो हमारे हैं, अब देखिए कितना दूर के हमारे दोस्त है, बात तो रोज होते हैं
1: जी।
0: ये है भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार, अनवर बिहारी और गणेश दास बंगाली जी, ये भी सब रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए हैं।
1: ओके, तो आपके काफी मित्र हैं जो रेडियो से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी जी।
1: ओके,
0: कहीं से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं, झूठ की कोई बात ही नहीं है।
0: जी,
1: जी तो शेख साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र वर्मा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त है, स्वस्थ है, रेडियो से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी जी, रेडियो से तो आप काफी सालों से जुड़े हुए हैं और जी आपसे काफी अच्छी बातें होती है रेडियो पर। आप अपने जगह के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, लेकिन आज हम अपने आपकी यादों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं।
1: जी पूछिए सर जी,
0: जी, जी, जी
1: यादों को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं?
0: जी सबसे पहले तो ये बताइए, आप रेडियो से कब से जुड़े?
1: सर रेडियो से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर 1985 से ही, मतलब रेडियो सुन रहा हूँ मैं 1985 से, मतलब बिना का सुबह का गीतमाला आता था जब से सुन रहा हूँ मैं सर। मेरे पापा को बहुत शौक था रेडियो सुनने का, वो मतलब पुराने दौर में जब वो घर में रेडियो होते थे बड़े वाले वाल वाले, उस रेडियो सेट में मेरे पापा सुनते थे।
0: okay.
1: और मेरे पापा जब वो सुनते थे तो मुझे भी बचपन में धीरे धीरे वो रेडियो में कैसे आवाज आती है, कैसे सुनने का शौक, मतलब ये शौक कब पैदा हो गया इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे इससे लगन लग गई हमारी।
0: ओके क्या बात है।
1: और करीब 40 सालों से रेडियो से ज्यादा हो गया है मुझे सुनते हुए, और जब से रेडियो की दुनिया में रह रहे हैं सर।
0: ओके, और आप पहले किस तरह से अपनी फरमाइश भेजा करते थे, खट के जरिए?
1: जी सर, पहले मैं मेरे स्थानीय चैनल है पास में इंदौर आकाशवाणी, वहाँ पर पत्र भेजता था, तो उसके माध्यम से मेरी पत्र में मतलब फरमाइश पूरी होती थी।
0: okay.
1: और मेरी फरमाइश का गीत बजाया जाता था। सन 2000 से पहले से मैं पत्र लिख रहा हूँ, मतलब ये 1985 के बाद में मतलब मेरे धीरे धीरे पत्र लिखना चालू हुआ। इंदौर आकाशवाणी तक ही पहले सीमित था मैं।
0: अच्छा जी।
1: फिर इंदौर आकाशवाणी पर सन 2000 के अंदर मतलब FM रेडियो स्टेशन चालू हुआ था, मतलब उसको FM में कन्वर्ट किया गया था।
0: ओके जी।
1: सन 2000 में विविध भारती इंदौर FM में कन्वर्ट हुआ था।
0: अच्छा।
1: वहाँ पर से एक लाइव टेलीफोन प्रोग्राम चालू हुआ था हेलो फरमाइश का, और वो 300 दिन आता था।
0: अच्छा वाह, क्या बात है।
1: हाँ, और वो 11 बजे आता था, बस उसमें बस पहला फोन मेरा उसी आकाशवाणी इंदौर में लगा था, और जब से ये फोन इन प्रोग्राम का जो जरिया चालू हुआ है वो अभी तक निरंतर जारी है। और पहले स्थानीय चैनल पे सुनते थे, फिर धीरे धीरे ये जो रेडियो का डिजिटल हुआ है, रेडियो प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर आ गया है, अब तो और भी तरक्की हो गई है। प्रसार भारती का एक नया ऐप आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म, अब इस पर भी सारे आकाशवाणी केंद्र भारत के सुनाई देते हैं। और फिर 2000 सन में यहाँ FM स्टेशन जो चालू हुआ था ना, जैसे इस पर सुनाई देने लगा था उज्जैन में भी।
0: ओके।
1: और पहले वहाँ पर हेलो फरमाइश प्रोग्राम में LP रिकॉर्ड से गाने बजाए जाते थे। आज देखो, पुराना दौर तो रेडियो का LP पे ही था, सारे गाने जो कलेक्शन आकाशवाणी में होते थे वो LP पर ही होते थे।
0: जी जी जी जी, हाँ जी।
1: अब फिर धीरे धीरे ये रेडियो का डिजिटल हुआ, रेडियो बदलता गया, और अब ये डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अब तो मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे मोबाइल पे सारे प्रोग्राम आकाशवाणी और रेडियो के सुनते हैं। और आकाशवाणी भी फिर धीरे धीरे अपग्रेड हो गए, उन्होंने भी अपने कंप्यूटर के माध्यम से जो भी लिसनर फोन लगाते हैं उनके गानों की चॉइस को पूरा करते हैं।
0: जैसा
1: सर हेलो फरमाइश प्रोग्राम का एक दिलचस्प इंदौर आकाशवाणी की बताता हूँ
0: जी,
1: कि यहाँ पर LP से जब गाने बजते थे ना, तो पूरी एक टीम रहती थी तैयार उस गाने को खोजने के लिए। जैसे किसी श्रोता ने लाइव टेलीकास्ट में प्रोग्राम में पसंद किया गाना कि मुझे संघर्ष फिल्म का गीत सुनना है, तो वो संघर्ष फिल्म की LP उनको निकालना पड़ती थी, और उनका वो नंबर कलेक्ट रहता था कि LP कौन से खांचे में किस नंबर पे किस सीरीज पे रखी हुई है।
0: बहुत ही मेहनत का काम होता था।
1: बहुत मेहनत का काम होता था सर जी, वो मैं समझता हूँ उस चीज को, बहुत मेहनत होती थी उसके अंदर LP में। और मैं अधिकतर वहाँ गाने पुराने पसंद करता था, ताकि थोड़ा समय अपन बात कर सके।
0: ओके
1: जी सर जी, ये तो सब आकाशवाणी और आप जितने भी हैं जो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, सभी की मतलब श्रोताओं के लिए धन्यवाद है आपके लिए
0: जी,
1: के सभी के गाने की चॉइस को आप पूरा करते हैं सर जी,
0: जी
1: तो
0: जी,
1: बस यही यादें हैं सर जी हमारी रेडियो से
0: जी।
1: और मेरे पिताजी का जो रेडियो की दुनिया से मतलब मेरा शौक लगा है, बस मैं रेडियो के सहारे ही मेरे पिताजी को याद करता हूँ। मेरे पिताजी तो नहीं है
0: जी जी,
1: रेडियो के माध्यम से उनकी यादों को अपने दिल में सजाए हुए रखता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जी।
1: जी
0: तो लोकेंद्र जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने रेडियो के बारे में, और आप किस तरह से रेडियो से जुड़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, और आगे भी इस तरह से बातें करते रहेंगे। तो अब
1: बहुत यादें हैं रेडियो की, तो मतलब बचपन से लेके अभी तक की।
0: जी जी जी, अगली बार जब कॉल लगेगा तब फिर से बात करेंगे इसके बारे में।
1: जी सर जी,
0: जी, जी।
1: गाना मेरा रहेगा संघर्ष फिल्म का, इसमें गाना है तुझे आजकल।

0: चाहती, ये भी टेलीफोन पर ही फिल्माया गया गाना है सर।
1: ओके जी, तो किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
0: ये शारदा प्रसाद जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, अर्जुन प्रधान जी हैं, टेक चंद्र अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी, अनु कुमार भट्टाचार्य जी हैं, बाइकोन मुंडा जी हैं, भगवान सिंह जी हैं और दिलीप पाहुजा जी हमारे मित्र।
1: तो लोकेंद्र जी कॉल
0: और
1: करने
0: ये
1: के लिए
0: आकाशवाणी के लिए भी एक गीत रहेगा
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: रात दिन तुझे चाहते हैं।
1: जी जी जी चाहते हैं और चाहते रहेंगे। लोकेंद्र जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं अमल बात कर रहा हूँ असम से।
0: जी अमल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
0: जी
1: हमारे असम में भी कल रात से बारिश हो के अभी थोड़ा मौसम ठंडा है।
0: अच्छा जी,
1: ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रहा है।
0: बढ़िया।
1: और मैं ऐसे मौसमों में एक गानों की फरमाइश करना चाहता हूँ।
0: हाँ जी बिल्कुल, कहिए कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: इंग्लिश बाबू डीसी मैम फिल्म का दीवाना मैं तेरा दीवाना, ये गाना को सुनना है।
0: जी जी जी, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: खासकर मैं इस गाने को आपको ही डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके थैंक यू सो मच।
1: और आकाश और एनएसएम की सभी आरजीसी को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। और हमारे दोस्त को डेडिकेट करना चाहूंगा भाईकोन मंडा
0: जी,
1: और बिमल बसुमतारी, रमेश पट जोगेंद्र रोंगपी, रुखुबेले मेठा, हितेंद्र दास, देवाशीष हजूरिका, प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी, सुटापा भाभी और हमारे आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ त्रिपुरा से, अविनाश टैली और भगवान सिंह परमार को, रमेश प्रजापति को, राकेश को, शिवा लोहर को, और हमारे असम में मेरी बहन है अंजलि बसुमतारी है, और सभी आकाशवाणी ईटानगर सुनने वाले दोस्त को डेडिकेट करो सर।
0: ओके तो अमल जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, सुनते हैं आपके पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश आर्णी महोदय, शाला नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी हृदय से धन्यवाद मानवर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आप कैसे हैं? मौसम कैसा है? बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है?
0: जी शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और बारिश का आनंद ले रहा हूँ।
1: जी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: इस वर्षा ऋतु का आनंद लेते रहिए
1: जी।
0: और आपसे प्रार्थना है कि थोड़ी सी वर्षा हमारे मथुरा वृंदावन में भेज दीजिए, क्योंकि मथुरा वृंदावन में चमचमाती हुई धूप है, खिली-खिली और मंद मंद गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, और ऐसे वातावरण में आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ
1: जी। काश ऐसा संभव हो पाता कि आपके वहां में कुछ बारिश भेज देता
0: जी
1: बस यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके वहाँ फिर से बारिश।
0: भगवान भास्कर अपने प्रचंड किरणों के साथ में उपस्थित रहते हैं।
1: तो धूप से बचे रहिए, रेडियो सुनते रहिए घर के अंदर बैठ के, कूलर और पंखा का इस्तेमाल कीजिए।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी।
0: आपकी बातों से सहमत हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर के अंदर रहते हुए गीत संगीत से जुड़ा रहता हूँ और गीत संगीत सुनते हुए मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति गीत संगीत से जुड़ता है और उसमें मग्न रहता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं होती, कोई अवसाद नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता है। इन सब चीजों से मुक्त होने से आदमी हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न चित रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज से ये पता चल रहा है हमें कि आप बहुत ही खुश है घर के अंदर बैठे हुए। तो शारदा प्रसाद जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: बस ईटानगर में बारिश हो रही है और तो यही उम्मीद करता हूँ कि एक वर्षा ऋतु का गीत सुन लिया जाए आकाशवाणी ईटानगर से।
1: जी बिल्कुल।
0: फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। रिम झिम रिम झिम रुम झुम झिझी झिझी ऋतु में हम तुम हम। ये श्रीला प्यारा गीत कुमार सानू साहब की आवाज में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर पहुँचाने हेतु।
1: जी जरूर सुनाएंगे और यही आशा करते हैं कि इस गीत के साथ साथ आपके वहाँ पे रिमझिम बारिश हो जाए।
0: जी जी धन्यवाद जी। स्वागत है, अभिनंदन है वर्षा ऋतु का
1: जी।
0: और वर्षा रानी जो है हमारे ऊपर में मेहरबान हो जाए
1: जी,
0: इसी उम्मीद के साथ में
1: जी।
0: ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सादर समर्पित करता हूँ हमारे मित्र योगी वाड्रा साहब को।
1: थैंक यू।
0: और वाड्रा साहब के साथ साथ में याद करना चाहता हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सरश्री लोकेंद्र वर्मा जी, अविनाश जी, आशुतोष जी, राजू यादव और तेज चंद्र अग्रवाल, सतीश रघुवंशी जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी, पूरम जी, पुष्कर नाथ जी और इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर सुन श्रोताओं को समर्पित करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए शारदा प्रसाद जी। सुनते हैं आपके पसंद का गाना
0: जी। हृदय धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
1: बहुत बहुत

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी सर, थैंक यू।
0: तो आप
1: कैसे हो?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आप अपना नाम भी बता दीजिए।
1: मैं हरदोरा बोल रहा हूँ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोपुर असम से।
0: ओके हरदोरा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: सर आज तो बारिश नहीं हुआ है, कल तो बहुत जोरदार बारिश हुआ था।
0: अच्छा जी,
1: आज बारिश नहीं हुआ तो बहुत ठंडा पड़ है।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: वहाँ कैसा है?
0: जी हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया है मौसम।
1: जी, जी, जी।
0: अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप, घर से या बाहर?
1: सर मैं घर से ही बोल रहा हूँ।
0: अच्छा घर से बोल रहे हैं ना, तो चलिए कहिए, घर में बैठे बैठे कौन सा फिल्म का गाना आज सुनना चाहेंगे आप?
1: डन नया फिल्म से सोनू निगम और सरना सरगम के आवाज में बहुत, मुझे गान थोड़ा याद नहीं है।
0: कोई बात नहीं,
1: गाना बहुत दूर जाने की दिल चाहता, उस गीत में आवाज दिया था सोनू निगम और सरना सरगम ने।
0: अच्छा सोनू निगम और साधना सरगम, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे हरिद्वारा जी?
1: सर ये गीत पहले तो आपको सुनाऊंगी, ये मैं गीत।
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और निलोत्पल द्वारा, दिनेश शर्मा, देवदत्त, सुम्बी दत्त, भाईकन मुंडा, रमेश पत्र और हेलो फरमाइश से जुड़े रहे सभी श्रोता के लिए।
0: ओके तो हरिद्वारा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते हेलो फरमाइश ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप, सुनाइए।
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए आप कैसे हो।
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, आपसे बात करके हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: बताऊँ आपको, सोयाबीन की फसल लगाई हमने।
0: जी
1: जी, तो अभी खरपतवार निकालने का काम चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी, और साथ में भी हम कार्यक्रम सुनते हैं। और मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि बरसात कम हो रही है।
0: ओके,
1: अभी 8 दिन से बरसात नहीं हुई है तो थोड़ी जरूरत पड़ रही है सोयाबीन की फसल के लिए।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो
1: और बताऊँ आपको, कुछ लोगों ने ऑरेंज के बगीचे भी लगा रखे हैं यहाँ पर।
0: अच्छा, ऑरेंज होता है वहाँ पे।
1: जी हाँ।
0: ओके वाह वाह, क्या बात है। तो प्रेम सिंह जी, आज कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: हाँ, बरसात बहुत कम हो रही है तो हम बरसात के लिए ही गाना सुनेंगे।
0: जी जरूर।
1: फिल्म का नाम है प्यासा सावन और गाने के बोल है, और हम तो यही कहेंगे मेगा से परदेश न जाए, पूरे भारत वर्ष में जोरदार बारिश करे ताकि सभी फसलों को अच्छा पानी मिले, सिंचाई का साधन भरपूर रूप से सभी के लिए हो।
0: जी,
1: और पूरे भारत देश में खुशहाली छाए।
0: जी बिल्कुल। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी साथी तो हमारे बहुत सारे, लोकेंद्र वर्मा, भगवान सिंह परमार, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, सुनील जय गोपाल से, रमेश टेलर है, भगवान सिंह परमार है, और आपके साथ भी सुनना चाहेंगे।
0: ओके, तो जरूर सुनाएंगे आपको पसंद का गाना। प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
0: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
0: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
0: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
0: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: श्रोता दोस्तों, कुछ ही पलों में यानी कि 8:30 पर आप आनंद उठा पाएंगे पाश्चात्य संगीत कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज़। इससे पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा हिंदी गीत।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: हेलो एवरीवन, दिस इज कम्सन योर होस्ट फॉर टुडे एंड वेलकम बैक टू वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर। इन दिस सेशन वी स्लो थिंग्स डाउन एंड टर्न इनवर्ड। दीज आर द सॉन्ग्स दैट डोंट नीड टू बी लाउड टू बी पावरफुल। दे स्पीक सॉफ्टली येट लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। So we begin with a song that feels like home in itself. It's familiar, comforting, and filled with a sense of belonging. Here's Take Me Home, Country Road by John Denver. Please enjoy.

तो श्रोता दोस्तों, आप सभी ने बहुत आनंद उठाया फिल्म, माफ कीजिएगा, वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम को मेरे साथ यानी आरजे लोरी के साथ। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे आकाशवाणी के एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारे इस सभा का ये आखिरी कार्यक्रम आप सबके लिए हम पेश कर रहे हैं, भूले बिसरे गीत। और भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में आज हमने आप सबके लिए चुना है बेहद ही खूबसूरत एल्बम, किशोर कुमार के खूबसूरत गानों का एक संग्रह, दिल से मिले दिल। और इस एल्बम में हम आपके लिए प्ले करेंगे दिल से मिले दिल, फिल्म दिल से मिले दिल से, और तुम मिले प्यार से अपराध फिल्म से, और ओ मेरी शर्मिली शर्मिली फिल्म से। दीवाना लेके आया है फिल्म मेरे जीवन साथी से, और भंवरे की गुंजन कल आज और कल से। तो हमारा यह सफर आप सबको बहुत ही सुहाना सफर लगेगा, क्योंकि ये गानों का सफर है 1960s 70s के पुराने गानों का, यानी कि भूले बिसरे गीतों का। चलिए शुरू करते हैं।

रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफ एम के सुनने वाले हमारे श्रोता दोस्तों, आज भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं किशोर कुमार के खूबसूरत गीतों का एक खूबसूरत संग्रह दिल से मिले दिल। और आपने पहला गीत सुना फिल्म दिल से मिले दिल से। अगला गीत सुनिए अपराध फिल्म से, जो कि 1972 में आई थी। और इस गीत के लिखने वाले हैं इंदिवर और गीत को सजाए हैं धुन से कल्याण जी आनंद जी ने।

भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में अगला गीत हम सुनेंगे दीवाना लेख के आया है मेरे जीवन साथी से, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

जयपुरी ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। चलिए अगला गीत हम सुनेंगे किशोर कुमार की ही आवाज में प्रेम पुजारी से फूलों के रंग से, जिसे लिखा है नीरज ने और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों के में आप सुन रहे थे भंवरे के गुंजन, कल आज और कल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, जिसे लिखा है हसरत जय

दोस्तों, इसी के साथ ही भूले बिसरे गीत की यह सुरीली महफिल यहीं पे संपन्न होती है। उम्मीद है कि आज के इन सदाबहार नगमों ने आपको बीते दौर की उन सुनहरी यादों से फिर रूबरू कराया होगा, जहां हर धुन एक एहसास बन जाती है और हर गीत किसी जिंदगी के खूबसूरत पल को फिर से जीने का अवसर देता है। दोस्तों, इन्हीं मधुर सुरों और मीठी यादों के साथ अब मैं आरजे नूरी, प्रसारण अधिकारी पी डोले तथा तकनीकी अभियंता गोलो कोरो को दीजिए इजाजत। लेकिन संगीत और ज्ञान का यह सफर यही थमता नहीं है। अब सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड से प्रसारित चुनिंदा और शानदार कार्यक्रम। इसी शुभकामना के साथ आपकी हर शाम संगीत की मधुरता से महकते रहे और जीवन खुशियों से सदाबहार रहे। नमस्कार, शुभरात्रि, जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली

0: राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। महान क्रिकेट ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का आज 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The India government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress." He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant railway station. He also inaugurated national highway projects, including a four-lane greenfield Delhi-Amritsar-Katra expressway, and laid the foundation stone for the development of six-lane greenfield Southern Ludhiana bypass. Earlier today, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind railway station in Haryana. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. The Prime Minister also dedicated the nation's elevated railway track at Kurukshetra and laid the foundation stone of the Sikh Museum at Kurukshetra. In Chandigarh, the Prime Minister launched projects around 4,700 crore rupees in key areas including healthcare, education and road infrastructure. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the parliament this Sunday ahead of the upcoming monsoon session of parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure a smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. President Draupadi Murmu will embark on state visits to Moldova, North Macedonia and Romania from the 19th to the 25th of this month.